आठ पहरो तेरा रंग राते रहाओ। गावन सुन सब तेरा पहाना, हुक्म बुझै सो साई समाना, जब जब जीवै तेरा नाओ। तुझ बिन दूजा नाही थाओ, दुख सो करते हुक्म रजाए, पाणै बख्श पाणै दे सजाए। दुहां सिरिया का करता आप, कुर्बान जाई तेरे प्रताप, तेरी कीमत तू है जाने, तू आपे बूझै सुने आप वखाने। सेई भगत जो तुद पाने, नानक तिन कै सद कुर्बाने। मलार महला पंजवा, परमेश्वर होवा दयाल, मेघ वरसै अमृत तार। सगले जी जंत तृपतासे, कार्ज आए पूरे रासे। सदा सदा मन नाम संभाल, गुरपुरे की सेवा पाया, ऐथै उथै निभै नाल रहाओ। दुख पन्ना पै पंजन हार, अपनिया जिया की कीती सार। राखण हार सदा मेहरबान, सदा सदा जाइय कुर्बान। काल गवाया करतै आप, सदा सदा मन तिसनो जाप। दृष्ट तार राखे सब जंत, गुण गावो नित नित भगवंत। एको करता आपे आप, हर के भक्त जाने प्रताप। नावे की पैज रखदा आया, नानक बोले तिसका बोलाया। मलार महला पंजवा, गुर सरनाई सगल निदान, साची दरगह पाईए मान। भ्रम पौ दुख दर्द सब जाए, सा संग सद हर गुण गाए। मन मेरे गुरपुरा सा लाहे, नाम निदान जपो दिन राती, मन चंदे फल पाए रहाओ। सतगुर जेवड़े अवर ना कोए, गुरपार ब्रह्म परमेश्वर सोए। जन्म मरण दुख ते राखे, माया बिख फिर बहुन ना चाखे। गुर की महिमा कथन ना जाए, गुर परमेश्वर सच नाए। सच संजम करनी सब साची, सो मन निर्मल जो गुर संगराची। गुरपुरा पाइए वडभाग, काम क्रोध लो मन ते त्याग। कर कृपा गुरचरण निवास, कर कृपा गुरचरण निवास, नानक की प्रभ सच अरदास। राग मलार महला पंजवा, पड़ताल करती जाए को अंकार, सतगुर प्रसाद। गुर मनार प्रे दयार, स्यों रंकिया किनोरी सगल सिंगार। तजोरी सगल बेकार, ताप तो अस्थिर थिया रहाओ। ऐसे रे मन पाए कै, आप गवाए कै। कर साधन स्यों संग, बाजे बजै मृदंग, अनाहद को कलरी। राम नाम बोले मधुर बैन अत सुहिया, ऐसी तेरे दर्शन की सोभ, आत्या पार प्रया मोग। तैसे ही संग संत बने, पाव उतार नाम पने। राम राम राम माल, मन फेरते हर संग संगिया, जन नानक प्रियो प्रीतम थिया। मलार महला पंजवा, मन कने प्रमे बने, उमकत रस चल। प्रमिलबे की चाह रहाओ, त्रै गुण माई मोह आई। कहो बेदन काहे, आने उपाव सगर किए, न दुख सा कैलाहे। पज सरन साधु नानका, मिल गुण गोबिंद गाहे। मलार महला पंजवा, प्रे की सोभ सुहावनी निकी। हा हा हू हू गंधर्व अपसरा, आनंद मंगल रस गावनी निकी रहाओ। तुनत ललत गुनाग अनक पांत, बहुबिद रूप दिखावनी निकी। गिर तर थल जल पवन भरपुर, कट कट लालन छावनी निकी। साध संग रामैया रस पायो, नानक जाकै पावनी निकी। मलार महला पंजवा, गुरप्रीत प्यारे, चरण कमल हृदय अंतर तारे। रहाओ दर्श सफल्यो, दर्श पेख्यो, गए किल बिख गए, मन निर्मल उजियारे। बिसम बिसम बिसम पई, अड़ग कोट हरते नाम लई। गुर चरण मस्तक डार पही, प्रभ एक तू ही भगत टेक तुहारे। जन नानक शरण द्वारे। मलार महला

मासो ही मास उपजै मासो सबो साक। सतगुर मिलै हुक्म बुझियै तां को आवै रास, आप छुटे न छुटियै नानक बचन विनाश। महला पहला। मास मास कर मूर्ख झगड़े ज्ञान ध्यान नहीं जाने, कौन मास कौन साग कहावै किसमें पाप समाने। गेंडा मार होम जग किए देवत्या की बाणे, मास छोड़ बैस नक पकड़ै राती मान सखाने। फड़ कर लोका नो दिखलावै ज्ञान ध्यान नहीं सूझै, नानक अंधे से क्यों कहियै नानक अंधे से ओ क्या कहियै, कह न कहे आ बूझै। अंधा सोए जे अंध कमावै तिस हृदय से लोचन नाही, मात पिता की रक्त निपन्ने मच्छी मास ना खाही। स्त्री पुरख है जानिस मेला उथे मंद कमाही, मासो निम्मे मासो जम्मे हम मासै के पांडे। ज्ञान ध्यान का सूझै नाही चतर कहा वह पांडे। बाहर का मास मंदा स्वामी घर का मास चंगेरा, जी जंत सब मासो होए जी लया वासेरा। अपख पखे पख तज छोड़ै अंध गुरु जिन केरा, मासो निम्मे मासो जम्मे हम मासै के पांडे। ज्ञान ध्यान कछ सूझै नाही चतर कहा वै पांडे। मास पुराणी मास कते भी चहजुग मास कमाना, जज काज भी आहे सुहावै उथे मास समाणा। स्त्री पुरख निपजै मासो पातशाह सुल्ताना, जे ओए दिसै नरक जांदे ता उनका दान ना लैना। देंदा नरक सुर्ग लैंदे देखो एह तिंगाना, आप न बुझै लोक बुझाए पांडे खरा सियाणा। पांडे तू जाने ही नाही किथों मास्यो पन्ना, तोयो अनक मादक पाहा तोयो त्रिभवन गन्ना। तोवा आखे हों बो बिदहचा तोवै बहुत बिकारा, एते रस छोड़ होवै सन्यासी नानक कह विचारा। पौड़ी हाउ क्या आखा एक जीव तेरा अंतरा किन्हीं पाया, सच्चा शब्द विचार से तुझी माए समाया। एक भगवा वेस कर परम देवन सतगुर के ना पाया, दे दसंतर पव थके तुद अंदर आप लुकाया। गुर का शब्द तन है कर चानने आप दिखाया, अपना आप पछाणिया गुरमति सच समाया। आवा गुण बजारिया बाजार जिनी रचाया, एक थिर सच्चा सलाहना जिन मन सच्चा पाया। श्लोक महला पहला। नानक माया कर्म बिरख फल अमृत फल वेस, सब कारण करता करे जिस खवाले तिस। महला दूजा। नानक दुनिया किया वड़ियाईया अग्गी से तीजाल, इनी जली ना विसारे आयक ना चलिया नाल। पौड़ी सिर सिर होए नबेड़ हुक्म चलाया तेरे हथ नबेड़ तू है मन पाया। काल चलाए बन कोई ना रखसी जर जरवाणा कन चढ़िया नचसी, सतगुर बोथ बेड़ सच्चा रखसी अगन पखे पड़हार अंदर पक्षी। फाथा चुगै चोग हुक्मी छुटसी करता करे सहोग कूड़ निखुटसी। श्लोक महला पहला।

नागर जना मेरी जात बख्या चमारंग हृदय राम गोबिंद गुण सारंग रहाओ सुर सरी सलल कृत बार नीरे संत जन करत नहीं पानंग सुरा अपवित्र नत अवर जल रे सुरत सुरसरी मिलत न होए आनंग तार तार अपवित्र कर मानिया रे जैसे कागरा करत बिचारंग भगत पागौत लिखिया तेह उपरे पूजिया कर नमस्कारंग मेरी जात कुट बांडला ढोर टोवंता नितय बनारसी आस पासा अब बिपर प्रधान ते कर डंडौत तेरे नाम शरण आए रविदास दासा मलार हार जपत तेउ जना पद्म कवलास पात ता समतुल नहीं आन को एक ही एक अनेक होए बिस्थरयो आन रे आन पर पुरुषो रहाओ जा कै भागवत लेखी है अवर नहीं पेखी है तास की जाता शोप शीपा ब्यास मैं लेखी है सनक मैं पेखी है नाम की नाम ना सप्त दीपा जा कै ईद बकरीद कुल गौरे बद करे मानिए सिख शहीद पीरा जा कै बाप वैसी करी पूत ऐसी सरी तिहू रे लोक प्रसिद्ध कबीरा जा के कुटंब के ढेड़ सब ढोर ढोवंत फिर है अजो बनारसी आस पासा आचार सहत बिपर करह डंडौत तिन तनय रविदास दासान दासा मलार एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिलत प्यारो प्राणनाथ कवन भगते साध संगत पाई परम गते रहाओ मैले कपरे कहां लो धोवो आवेगी नींद कहां लग सोवो जोई जोई जोरियो सोई सोई फाटियो झूठे बनज उठ ही गई हटियो कहो रविदास।

दर्शन प्यास बहुत मन मेरा, मिल नानक देव जगत गुर के रै। कानड़ा महला पंजवा, ऐसी कौन विदे दर्शन परसना रहाओ, आस प्यास सफल मूर्त उमग ही ओ तरसना। दीन लीन प्यास मीन संतना हर संतना, हर संतना की रेन हियो अर्प देन। प्रभ पय है कृपेन मान मोह त्याग छोड़ो, तो नानक हर जियो भेटना। कानड़ा महला पंजवा, रंगा रंग रंगन के रंगा, कीट हस्त पूर्ण सब संगा रहाओ। बर्त नेम तीर्थ सहत गंगा, जल हेवत भूख अर नंगा। पूजा चार करत में लंगा, चक्कर कर्म तिलक खा टंगा। दर्शन भेटे बिन सतसंगा, हठ निगरह अत रहत बिटंगा। हाँ रोग ब्यापै चुकै न पंगा, काम क्रोध अत तृष्ण जरंगा। सो मुक्त नानक जे सतगुर चंगा। कानड़ा महला पंजवा, कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तिख बूझ गई गई मिल साध जना, पंच भागे चोर सहजे सुखैनो। हरे गुण गावती गावती गावती दर्श प्यार रहाओ। जैसी करी प्रभ मोसियो मोसियो, ऐसी हों कैसे कराऊं। हियो तुम्हारे बलबले बलबले बल गई, पहले पै संत पाए। त्याए त्याए प्रीत लाए, प्रभ थान थे रोके हरो। जित जंतन कर विचार, अनक दास कीर्त करे तुहारी। सोई मिलियो जो भाव तो, जन नानक ठाकर रहो समाए। एक तू ही तू ही तू ही। कानड़ा महला पंजवा, कर अठवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। त्यागी है गुमान मान, पेखता दयाल लाल। हां हां मन चरण रेन रहाओ। हर संत मंत गोपाल ज्ञान ध्यान, हृदय गोबिंद गाए। चरण कमल प्रीत लाए, दीन दयाल मोहना। कृपाल दया मया तार, नानक मांगे नाम दान। तज मोह परम सगल अभमान। कानड़ा महला पंजवा, प्रभ कहन मलन दहन लहन। गुर मिले आन नहीं उपाओ रहाओ। तटन खटन जटन होमन, नाही डंड धार सुवाओ। जतन भांतन तपन भ्रमन, अनक कथन कथते नहीं थहां पाई ठाओ। सोध सगर सोधना सुख नानका भजनाओ। कानड़ा महला पंजवा, करनावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पतत पावन भगत पवछल, पै हरन तारन तरन रहाओ। नैन तिबते दर्श पेख, जस तोख सुनत करन। प्राण नाथ या नाथ दाते, दीन गोबिंद सरन। आस पूर्ण दुख बिनासन, गही ओट नानक हर चरण। कानड़ा महला पंजवा, चरण सरण दयाल ठाकर आन नाही जाए। पतत पावन बिरद स्वामी, उधर ते हर त्याए रहाओ। संसार गार बेकार सागर, पतत मोह मान अंध। बिकल माया संग तंद, कर गह प्रभ आप काढ़ो। राख लियो गोबिंद राय, अनाथ नाथ सनाथ संतन। कोट पाप विनाश मन दर्शने की प्यास, प्रभ पूर्ण गुणतास। कृपाल दयाल गोपाल नानक, हर रसना गुण गाए। कानड़ा महला पंजवा, वार वारो अनक डारो। सुख प्रे सुहाग पलक रात रहाओ। कनक मंदर पाठ सेज सखी, मोहे नाहे इन स्यों तात। मुक्त लाल अनक भोग, बिन नाम नानक हाथ। रूखो भोजन भूम सैन सखी, प्रे संग सुख बिहात। कानड़ा महला पंजवा, अहं तोरो मुख जोरो। गुर गुर करत मन लोरो, प्रे प्रीत प्यारो मोरो रहाओ।
ਗ੍ਰਹਿ ਸੇ ਸੁਹਾਵੀ ਆਂਗਨ ਚੈਨਾ ਤੋਰੋ ਰੀ ਤੋਰੋ ਪੰਚ ਦੂਤਨ ਸਿਉ ਸੰਗ ਤੋਰੋ ਆਏ ਨਾ ਜਾਏ ਬਸੇ ਨਿਜ ਆਸਨ ਊਂਦ ਕਮਲ ਬਿਗਸੋਰੋ ਛੁਟਕੀ ਹਉ ਮੈਂ ਸੋਰੋ ਗਾਇਓ ਰੀ ਗਾਇਓ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਗੁਨੀ ਗਹਿਰੋ ਕਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੇ ਜਾਪ ਮਨਾ ਹਰ ਜਾਪ ਜੋ ਸੰਤ ਬੇਦ ਕਹਿਤ ਪੰਥ ਗਾਖਰੋ ਮੋਹ ਮਗਨ ਅਹੰਤਾਪ ਰਹਾਓ ਜੋ ਰਾਤੇ ਮਾਤੇ ਸੰਗ ਬੱਪਰੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸੰਤਾਪ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੋ ਜਨ ਉਧਰੈ ਜਿਸੈ ਉਧਾਰੋ ਆਪ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਮੋਹ ਪੈ ਭਰਮਾ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਦਸਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਸੋ ਦਾਨ ਦੇਹੋ ਜੀ ਸੰਤੋ ਜਾਤ ਜੀਓ ਬਲਿਹਾਰ ਮਾਨ ਮੋਹੀ ਪੰਚ ਦੋਖੀ ਉਰਜ ਨਿਕਟ ਬਸਿਓ ਤਾਂਕੀ ਸਰਨ ਸਾਧੂਆ ਦੂਤ ਸੰਗ ਨਿਵਾਰ ਰਹਾਓ ਕੋਟ ਜਨਮ ਜੋਨ ਭ੍ਰਮਿਓ ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਦੁਆਰ ਕਿਰਪਾ ਗੋਬਿੰਦ ਭਈ ਮਿਲਿਓ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਦੁਲਭ ਜਨਮ ਸਫਲ ਨਾਨਕ ਭਵ ਉਤਾਰ ਪਾਰ ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਗਿਆਰਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਆਪਣੇ ਆਏ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਨੋ ਕਛੂ ਦਿਖਾਏ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿਓ ਸੁਖ ਬਾਲੇ ਭੋਲੇ ਰਹਾਓ ਸੰਯੋਗ ਮਿਲਾਏ ਸਾਧ ਸੰਗਾਏ ਕਥੂ ਨਾ ਜਾਏ ਕਰੈ ਬਸਾਏ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਇਹ ਚੋਲੈ ਚਰਨ ਲੁਭਾਏ ਅੰਤ ਜਾਏ ਥਾਂ ਥਨਾਏ ਸਰਬ ਸਮਾਏ ਰਸਕ ਰਸਕ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਬੋਲੈ ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਠਾਕਰ ਮਿਲਨ ਦੁਰਾਈ ਪਰਮਿਤ ਰੂਪਾ ਗਾਮਾ ਗੋਚਰ ਰਹਿਓ ਸਰਬ ਸਮਾਈ ਰਹਾਓ ਕਹਿਣ ਭਵਨ ਨਾਹੀ ਪਾਇਓ ਪਾਇਓ ਅਨਕ ਉਕਤ ਚਤਰਾਈ ਜਤਨ ਜਤਨ ਅਨਕਿਓ ਪਾਵਰੇ ਤਉ ਮਿਲਿਓ ਜੋ ਕਿਰਪਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਰ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਰੇ ਨਾਈ ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਈ ਸਿਮਰਤ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ

जानो हम बिरथे कोई मार्ग पंथ बतावे प्रभु का, कहो तिन कहो क्या दिन थे, सब तन मन अर्पो अर्प्या रापो कोई मिले प्रभु मिल थे। हर के गुण बहुत बहुत बहुत शोभा, हम तुच्छ कर कर वर्ण थे, हमरी मत वसगत प्रभु तुमरै, जन नानक के प्रभु समर्थ थे, कल्याण महला चौथा। मेरे मन जप हर गुना कथ सुनथई, धर्म अर्थ सब काम मुख है, जन पीछे लग फिर थई रहाओ। सो हर हर नाम ते आवे हर जन, जिस वट भाग मथई, जै दरगे प्रभ लेखा मांगे, तै छूटे नाम ते आए थई। हमरे दुख बहु जन्म जन्म के, दुख हम मैं मैल लग थई, गुर तार कृपा हर जल ना वाए, सब के लिख पाप कथई। जन कह हृदय अंतर प्रभ स्वामी।

रस रस को घटक नित पीजै, बसदा सबत दीप है सागर, कढ़ कंचन कर तरीजै। मेरे ठाकर के जन इनो ना बांचै, हर मांगै हर रस दीजै। साकत नर प्राणी सत भूखे, नित भूखन भूख करीजै। तावत ताए ताव है प्रीत माया, लख कोसन कौ बिथ दीजै। हर हर हर हर हर जन उत्तम, क्या उपमा तिन दीजै। राम नाम तुल और ना उपमा, जन नानक कृपा करीजै। कल्याण महला चौथा। राम गुर पारस परस करीजै, हम निर्गुणी मनूर यत फीके, मिल सतगुर पारस की जय। रहाओ सुरग मुक्त बैकुंठ सब बांछै, नित आसा आस करी जय। हर दर्शन के जन मुक्त ना मांगै, मिल दर्शन तृप्त मन धीजै। माया मोह सबल है भारी, मोह कालख दाग लगी जय। मेरे ठाकर के जन अलिप्त है मुक्ते, ज्यो मुर्गाई पंख ना पीजै। चंदन वास भयंगम वेड़ी, के मिलिए चंदन लीजै। काढ़ खड़ग गुर ज्ञान करारा, बिक्षेद छेद रस पीजै। आन आन समदा बहुकीनी, पल बैसंतर पसम करी जय। महायुगर पाप साक्त नरकीने, मेरे साधु लुकी दीजै। साधु साधु साध जानी के, जिनंतर नाम तरी जय। परस निपरस पय साधु जन, जन हर भगवान दखी जय। साक्त सूत बहु गुरुजी भरिया, क्यों कर तंत नी जय। तंत सूत किशनिक सह नाही, साक्त संग ना कीजै। सतगुर साध संगत है नीकी, मिल संगत राम रवीजै। अंतर रतन जिवे हर माणक, गुर कृपा ते लीजै। मेरा ठाकर वड्डा वड्डा है स्वामी, हम क्यों कर मिले मिलीजै। नानक मेल मिलाए गुरपूरा, जन को पूर्ण दीजै। कल्याण महला चौथा। रामा राम रामो राम रवीजै, साधु साधु साध जानी के, मिल साधु हर रंग की जय। रहाओ जी जंत सब जग है जेता, मन डोलत डोल करी जय। कृपा कृपा कर साध मिलावो, जग थमन कौ थम दी जय। बसदा तला तला सभी ऊपर, मिल साधु चरण रुली जय। अति उत्तम अति उत्तम होवो, सब श्रेष्ठ चरण तल दी जय। गुरमुख जोत भली सिवनी की, आन पानी सख्त भरी जय। मैन दंत निकसै गुरबचनी, सार चब चब हर रस पी जय। राम नाम अन गुरो बहु किया, गुर साधु पुरख मिली जय। गुण राम नाम बिसीरन की है, हर सगल भवन जस दी जय। साधु साधु साध मन प्रीतम, बिन देखे रहे ना सकी जय। ज्यों जल मीन जलंग जल प्रीत है, खिन जल बिन फूट मरी जय।

जागत बिकसै मूठो अंधा गल फाही सिर मारे तंदा आसा आवै मनसा जाए उर्जी ताणी किशना बसाए जागस जीवन जागणहारा सुख सागर अमृत भंडारा रहाओ कहो ना बूझे अंध ना सूझै पूंडी कार कमाई आपे प्रीत प्रेम परमेश्वर करमी।

अंदर प्रभ के हर गुण गाए, ता को करो सगल नमस्कार, जा कै मन पूर्ण निरंकार। कर कृपा मोहे ठाकुर देवा, नानक उदरै जन की सेवा। प्रभाती महला पंजवां, गुण गावत मन होए आनंद, आठ पैर सिमरो भगवंत। जा कै सिमरन कलमल जाहे, तिस गुर की हम चरनी पाहे। सुमत देवो संत प्यारे, सिमरो नाम मोहे निस्तारे। रहाओ जिन गुर कहया मार्ग सीधा, सगल त्याग नाम हर गीदा। तिस गुर कै सदा बल जाइय, हर सिमरन जिस गुर ते पाइय। बूढ़त प्राणी जिन गुरै तराया, जिस प्रसाद मोहे नहीं माया। हालत पलत जिन गुरै सवारिया, तिस गुर ऊपर सदा हों वारिया। महामुगते किया ज्ञानी, गुर पूरे की कथ कहानी। पार ब्रह्म नानक गुरदेव, वड़े पाग पाई है हर सेव। प्रभाती महला पंजवां, सगले दुख मिटे सुख दिए, अपना नाम जपाया। कर कृपा अपनी सेवा लाए, सगला दुर्त मिटाया। हम बारक शरण प्रभ दयाल, अवगण काट किए प्रभ अपने। राख लिए मेरे गुरु गोपाल, रहाओ ताप पाप बिनसे खिन पीतर। पय कृपाल गुसाई, सास सास पार ब्रह्म आराधी, अपने सदगुर कै बल जाई। अगम गोचर बेअंत स्वामी, ताका अंत ना पाई है। लाहा खाट हुई है तनवंता, अपना प्रभु त्याई है। आठ पहर पार ब्रह्म त्याई, सदा सदा गुण गाया। कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ, पार ब्रह्म गुर पाया। प्रभाती महला पंजवां, सिमरत नाम किलबिख सब नासे, सच नाम गुरदीनी रासे। प्रभ की दरगह सोभावंते, सेवक सेव सदा सोहंते। हर हर नाम जपो मेरे भाई, सगले रोग दोख सब बिनसै। अज्ञान अंधेरा मनते जाई रहाओ।

तत्र गते संसार नानक सो घर खंग व्यापते छलंग शद्रंग कोट बेगनंग अपराधंग किल बखमलंग परम मोहंग मान अपमानंग मदंग माया व्यापतंग मृत्यु जन्म प्रमंत नरक अनक उपावंग न सिद्ध्यते निर्मलंग साध संग है जपंत नानक गोपाल नामंग अरमंत गुण गोविंद नित प्रत तरन तरन सरन स्वामी रमणशील परमेश्वर है करण कारण समर्थ है दान देत प्रपूर्ण है निराश आस करनंग सगल अर्थ याले है गुण निधान समरंत नानक सगल जाचंत जाचक है दुर्गम स्थान सुगमंग महादुख सर्व सुखण है दुर्वचन भेद परमंग साकत फसनंत सुरजन है अस्थतंग सोगहरखंग पै खीणंत निर्पव पै अटवियंग महानगर वासंग धर्म लखण प्रमया साध संगम राम राम रमणंग शरण नानक हर हर दयाल चरणंग हे अजित सूर संग्रामंग अत बल नाबो मर्दन गण गंधर्व देव मानुखियंग पस पंखी बेमोहन है हर करण हारंग नमस्कारंग शरण नानक जगदीश्वर हे कामंग नरक विश्रामंग बहुजोनी प्रमावण चित हरणंग त्रैलोक गम्यंग जप तपसील विदारण अल्प सुख अवित चंचल ऊच नीच समावण तव भय विमुंचत साध संगम ओट नानक नारायण हे काल मूल क्रोधंग कदंच करनाना उपर्जते बिखयंत जीवंग वस्यंग क्रोत निरत्यंग क्रोत जथा मरकट अनक शासन ताड़ंत जमदूत तव संगे अदमंग नर दीन दुख पंजन दयाल प्रभ नानक सर्व जी रखिया करोत हे लोबा लंपट संग सिर मोर अनक लहरी कलोलते तावंत जिया बहु प्रकारंग अनक भांत बहु डोलते नच मित्रंग नच हिष्टंग नच बांधव नच मात पिता तव लज्जिया अकरणंग क्रोत अखाद खाद्यंग असाज्यंग साज समझिया त्राहे त्राहे शरण स्वामी विज्ञाप्त नानक हर नर हर है हे जन्म मरण मूलंग हे जन्म मरण मूलंग अहंकारंग पापात्मा मित्रंग तजंत सत्रंग दृढ़ंत अनक माया विस्तीर्ण आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख वो बहुगण परम प्यान उद्यान रमणंग महाविकट असाध रोगण वैद्यंग पार ब्रह्म परमेश्वर आराध नानक हर हर हरे हे प्राण नाथ गोविंद कृपा निधान जगद गुरो हे संसार ताप हरण करना मैं सब दुख हरो हे शरण योग दयाल दीना नाथ मया करो शरीर स्वस्थ खीण समाये समरंत नानक राम दामोदर माधव चरण कमल सरणंग रमणंग गोपाल कीर्तन साध संगेन तरणंग नानक महासागर पैदुत्तर सिर मस्तक रख्या पार ब्रह्मंग हस्त काया रख्या परमेश्वर है आत्म रख्या गोपाल स्वामी तन चरण रख्या जगदीश्वर है सर्व रख्या गुरदयाल पै दुख विनाशन भगत वछला नाथ नाथे शरण नान पुरखा चुत जैन कला तारियो आकाशंग बैसंतरंग काष्ट बेष्टंग जैन कला ससूर नक्षत्र ज्योत्यंग सासंग शरीर तारणंग जैन कला मात गर्भ प्रतिपालंग नैच जंत जठर रोगण तेन कला अस्थंबंग सरोवरंग नानक नहश जंत तरंग तोयण गुसाई गृष्ट रूपेण सिमरणंग सर्वत्र जीवन लब्ध्यंग संत संगेण नानक स्वच्छ मार्ग हर भक्तन मस्कंग पगनंत सैलंग कर्दमंग तरंत पपील कै सागरंग लंघंत पिंगंग तम प्रगास अंध कै साध संगेण स्मरंत गोविंद शरण नानक हर हर हरे तिलकहीणंग जथा विपरा अमरहीणंग जथा राजन आवदहीणंग जथा सूरा नानक धर्महीणंग तथा वैष्णव न शंखंग न चक्रंग न गदा न श्यामंग आश्चर्य रूपं अरहंत जन्मं नेत नेत कथं।

सम्मन जो इस प्रेम की दम केहो होती साट, रावण होते सो रंकन जिन सिर दीने काट। प्रीत प्रेम तन खच रहया बीच नाराई होत, चरण कमल मन बेदेओ बुजन सुरत संजोग। सागर मेर उद्यान बन नवखंड बसदा परम, मूसन प्रेम परम कै गनो एक कर करम। मूसन मस्कर प्रेम की रही जो अंबर छाए, बिंदे बांदे कमल में पवर रहे लपटाए। जप तप संजम हरख सुख मान महत्यार गर्भ, मूसन निमखक प्रेम पर वार वार देओ सर्ब। मूसन मर्म न जानई मर्त हिरत संसार, प्रेम परम न बेदेओ उर्जो मिथ व्यवहार। कब दब जब जारी है बिशरत प्रेम बेहाल, मूसन तब ही मूसी है बिसरत पुरख दयाल। जा को प्रेम सुआओ है चरण चितव मन माहे, नानक बिरही ब्रह्म के आन न कतहू जाहे। लख काटी ऊंचो कनौ चंचल चीत बेहाल, नीच कीच निमृत कनी करनी कमल जमाल। कमल नैन अंजन श्याम चंद्र बदन चित चार, मूसन मगन मरम स्यो खंड खंड कर हार। मगन पयो प्रे प्रेम स्यो सूद ना सिमरत अंग, प्रगट पयो सब लो मैं नानक अदम पतंग। श्लोक भगत कबीर जीओ के एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कबीर मेरी सिमरनी रसना उपर राम, आज जुगादी सगल भगत ता को सुख विश्राम। कबीर मेरी जात कहो सब को हसने हार, बलिहारी इस जात कहो जे जप्यो सृजनहार। कबीर डगमग क्या करे कहां डुलावे जियो, सर्व सुख को नायको राम नाम रस पियो। कबीर कंचन के कुंडल बने ऊपर लाल जड़ाओ, दिसे दांदे कान ज्यो जिनमन नाही नाओ। कबीर ऐसा एक याद जो जीवत मृतक होए, निरपय होए कै गुण रवे जत पेखो तत सोए। कबीर जा दिन हो मुआ पाछ पया आनंद, मोहे मिलियो प्रभ अपना संगी भजै गोबिंद। कबीर सब ते हम बुरे हम तज भलो सब कोए, जिन ऐसा कर बुझिया मीत हमारा सोए। कबीर आई मुझे पै अनक करे कर पेस, हम राखे गुरे अपने उनकी नो आदेश। कबीर सोई मारी है जे मुए सुख होए, पलो पलो सब को कह बुरो न मन कोए। कबीर राती हो मैं कारिया कारे उबे जंत, लह फाहे उठताव ते से जान मारे भगवंत। कबीर चंदन का बिरवा पला बेड़ो टाग पलास, ओए पी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास। कबीर बांस बढ़ाई बूढ़िया इओ मत डूबो कोए, चंदन कै निकटे बसे बांस सुगंध ना होए। कबीर दीन गवाया दुनी से ओ दुनी ना चली साथ, पाए कुहाड़ा मारिया गाफले अपने हाथ। कबीर जय जय हों फिर कौतक ठा उठाए, एक राम स्नेही बहरा उजर मेरे पाए। कबीर संतन की चुंगिया पली पाठक सती गाओ, आग लगो तेह तौल हारो जे नहीं हर को नाओ। कबीर संत मुए क्या रोई है जो अपने ग्रह जाए, रोबो सागत बापरे जो हट है हट बेकाए। कबीर सागत ऐसा है जैसी लक्षण की खान, कोने बैठे खाई है प्रगट होए निदान। कबीर माया डोलनी
पवन वहै हिवतार, जिन बिलोया तिन खाया अवर बिलो बनहार। कबीर माया चोरटी मुसमुस लावै हाट, एक कबीरा नाम सहजन कीनी बारै बाट। कबीर सूख ना एह जोग करै जो बहुतै मीत, जो चित राखै एक स्यों ते सुख पावै नीत। कबीर जिस मरने ते जग डरै, मेरे मन आनंद मरने ही ते पाई है पूर्ण परमानंद। राम पदार्थ पाए कै कबीरा गांठ ना खोल, नहीं पट नहीं पारखू नहीं गाक नहीं मोल। कबीर ता स्यों प्रीत कर जा को ठाकर राम, पंडित राजे पूपती आवे कौने काम। कबीर प्रीत एक स्यों किए आन दुबदा जाए, पावे लांबे केस कर पावे कर रमुडाए। कबीर जा काजर की कोठरी अंध परे तस्माहे, हम बलिहारी तिन कहो पैस जो निक सजाहे। कबीर यह तन जाएगा सको ता लेहो बहोर, नांगे पावो ते गए जिनके लाख करोर। कबीर यह तन जाएगा कवने मार्ग लाए, कै संगत कर साध।

करते हुए सो होए। कबीर बैसनो की कुकर भली सागत की बुरी माए, ओ नित सुने हर नाम जस ओ पाप बिसाहन जाए। कबीर हरना दुबला।

बिन हर भगत ना मुक्त होए इयों कह रमे कबीर। कबीर मन निर्मल पया जैसा गंगा नीर, पाछे लागो हर फिरै कहत कबीर कबीर। कबीर हर दी प्यारी चूना उज्जल पाए, राम स्नेही तो मिलै दोनों बरन गवाए। कबीर हर दी पी रतन हरै चून चहन ना रहाए, बलिहारी यह प्रीत कहो जे जात बरन कुल जाए। कबीर मुक्त दो

कबीर माए मुंडो ते गुरु की जाते परम ना जाए, आप डुबे चौबे मैं चेले दिए बहाए। कबीर जेते पाप किए राखे तले दुराए, प्रगट पै निदान सब जा पूछे धर्म राए। कबीर हर का सिमरन छाड़ के पाल्यो बहुत कुटंब, तंदा करता रह गया भाई रहा ना बंद। कबीर हर का सिमरन छाड़ के रात जगावन जाए, सरपन हो कै उतरे जाए अपने खाए। कबीर हर का सिमरन छाड़ के अहोई राखे नार, गधी हो कै उतरे पारस है मन चार। कबीर चतराई अत कनी हर जप हिरदय माहे, सूरी उपर खेलना ग्रहता ठाहर नाहे। कबीर सोई मुख तन है जा मुकैये राम, देही किसकी बापरी पवित्र होए गो ग्राम। कबीर सोई कुल पली जा कुल हर को दास, जे कुल दास न उपजै सो कुल ढाक पलास। कबीर है गए बाहन सगन कानो, लाख तजा फहराए, या सुख ते पिखिया पली जो हर सिमरत दिन जाए। कबीर सब जग हों फिरयो मांदल कंध चढ़ाए, कोरी कोई काहू को नहीं सब देखी ठोक बजाए। मार्ग मोती बीथरे अंधा निकस्यो आए, जोत बिना जगदीश की जगतो लंगे जाए। बूढ़ा बंस कबीर का उपजो पूत कमाल, हर का सिमरन छाड़ के कर ले आया माल। कबीर साधु को मिलने जाइए साथ ना लीजे कोए, पाछे पाव ना दीजिए आगे होए सो होए। कबीर जग बांध्यो जह जेवरी तेह मत बंधो कबीर, जह आटा लोन ज्यों सोन समान शरीर। कबीर हंस उड्यो तन गाड्यो सो जाई सैनाहा, अज हूं जियो ना छोड़ई रंकाई नैनाहा। कबीर नै निहारो तुझ कहो श्रवण सुनो तो नाओ, बैन उचरो तो नाम जी चरण कमल रिद ठाओ। कबीर सुर्ग नर्ग ते मैं रहो सतगुर के प्रसाद, चरण कमल की मौज में रहो अंत अर्याद। कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे उन्मान, कह बे को शोभा नहीं देखा ही परवान। कबीर देख कह कह कहो कहे ना को पतियाए, हर जैसा तैसा उही रहो हरख गुन गाए। कबीर चुगै चितारे पी चुगै चुग चुग चितारे, जैसे बचरे कुंज मन माया ममता रे। कबीर अंबर कन हर छाया बरख भरे सरताल, चातरक जो तरसत रह तिनको कौन हवाल। कबीर चकी जो निस बिछरे आए मिले प्रभात, जो नर बिछरे राम स्यो ना दिन मिले ना रात। कबीर रह नायर बेशोरिया रहोरे संख मजूर, देवल देवल ताहड़ी देस उगवत सूर। कबीर सूता क्या करे जाग रोए पै दुख, जाका बासा गोर मैं सो क्यों सो वै सुख। कबीर सूता क्या कर है उठ के ना जपै मुरार, एक दिन सोमन होए गो लांबे गोट पसार। कबीर सूता क्या करे बैठा रहो अर जाग, जाके संगते बिछरा ताही के संग लाग। कबीर संत की गल ना छोड़िए मार्ग लागा जाओ, पेखत ही पोनीत होए पेट जपिए नाओ। कबीर साक्त संग ना कीजिए दूर जाइए भाग, बासन कारो परसिए तौ कछ लागे दाग। कबीरा राम ना चेतियो जरा पहुंचो आए, लागी मंदिर द्वार ते आप क्या काढ़िया जाए। कबीर कारण सो पयो जो कि नो करतार, तिस बिन दूसर को नहीं एक सृजनहार। कबीर फल लागे फलन पाकन लागे आंब, जाय पहुंचे खसम को जो बीच ना खाही कांब। कबीर ठाकर पूजे मोल ले मानहट तीर्थ जाहे, देखा देखी स्वांग तार पुले पटका खाहे। कबीर पाहन परमेश्वर किया पूजे सब संसार, इस परवासे जो रहे बूढ़े काली तार।
ਕਬੀਰ ਕਾਗਦ ਕੀ ਓਬਰੀ, ਮਸਕੇ ਕਰਮ ਕਪਾਟ, ਪਾਹਨ ਬੋਰੀ ਪਿਰਥਮੀ, ਪੰਡਿਤ ਪਾੜੀ ਬਾਟ। ਕਬੀਰ ਕਾਲ ਕਰੰਤਾ ਅਬ ਹੈ ਕਰ, ਅਬ ਕਰਤਾ ਸੋਏ ਤਾਲ, ਪਾਛੈ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜਬ ਸਿਰ ਪਰ ਆਵੈ ਕਾਲ। ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਜਨਤਿਕ ਦੇਖਿਆ, ਜੈਸੀ ਧੋਈ ਲਾਖ, ਦਿਸੈ ਚੰਚਲ ਬਹੁਗੁਣਾ, ਮਤਹੀਨਾ ਨਾ ਪਾਕ। ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਕਹੋ, ਜਮ ਨਾ ਕਰੈ ਤਿਸਕਾਰ, ਜਿਨ ਇਹੋ ਜਮੂਆ ਸਿਰਜਿਆ, ਸੋ ਜਪਿਆ ਪਰਵਦਗਾਰ। ਕਬੀਰ ਕਸਤੂਰੀ ਪਇਆ, ਭਵਰ ਭਏ ਸਬਦਾਸ, ਜਿਉ ਜਿਉ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕੀ, ਤਿਉ ਤਿਉ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਕਬੀਰ ਗਹਿ ਗਜ ਪਰਿਓ ਕੁਟੰਬ ਕੈ, ਕਾਂਠੈ ਰਹਿ ਗਿਓ ਰਾਮ, ਆਏ ਪਰੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੇ, ਵਿਚੈ ਤੂੰ ਮਾ ਤਾਮ। ਕਬੀਰ ਸਾਗ ਤੇ ਸੂਕਰ ਭਲਾ, ਰਾਖੈ ਅੱਛਾ ਗਾਓ, ਉਹ ਸਾਗਤ ਬੱਪਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਲਹਿ ਨਾਓ। ਕਬੀਰ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਜੋਰ ਕੈ, ਜੋਰੇ ਲੱਖ ਕਰੋਰ, ਚਲਤੀ ਬਾਰ ਨਾ ਕਛ ਮਿਲਿਓ, ਲਈ ਲੰਗੋਟੀ ਤੋਰ। ਕਬੀਰ ਬੈਸਰੋਂ ਹੁਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਪਿਆ, ਮਾਲਾ ਮੇਲੀ ਚਾਰ, ਬਾਹਰ ਕੰਚਨ ਬਾਰਹਾ, ਪਿੱਤਰ ਭਰੀ ਪੰਗਾਰ। ਕਬੀਰ ਰੋਣਾ ਹੋਏ ਰਹੁ ਬਾਟਕਾ, ਤਜ ਮਨ ਕਾ ਅਭਮਾਨ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਾਸ ਹੋਏ ਤਾਹੇ ਮਿਲੈ ਭਗਵਾਨ। ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਹੁਆ।

मुख ते राम संभाल, हाथ पाओ कर काम सब चीत निरंजन नाल। महला पंजवा, कबीरा हमरा को नहीं, हम किसू के नाहे, जिन एहो रचन रचाया तिसी माए सुमाहे। कबीर की चिड़ियाटा गिर परया, किशु ना आयो हाथ, पीस्त पीस्त चाबिया सोई निभया साथ। कबीर मन जाने सब बात, जानत ही अवगन करे काहे की कुसलात। हाथ दीप कुए पर है, कबीर लागी प्री सुजान, स्यों बरजै लो गया जान, ता स्यों टूटी क्यों बने जाके जी प्राण। कबीर कोठे मंडप हेत कर, काहे मरो सवार, कार्ज साढ़े तीन हाथ कहीं ता पौने चार। कबीर जो मैं चितवो ना करे, क्या मेरे चितवे होए, अपना चितव्या हर करे जो मेरे चेतना होए। महला तीजा, चिंता पे आप कराए सिया, चिंत पे आपे दे, नानक सो साल आही है जे सब ना सार करे। महला पंजवा, कबीर राम ना चेते ओ, फिर या लालच माहे, पाप करंता मर गया औध पुनी खिन माहे। कबीर काया काची कारवी, केवल काची तात, साबत रखे ता राम पाज, नाहे ता बिरठी बात। कबीर केसो केसो कुकिया, ना सोइए आसार, रात दिवस के कुकने कबहू के सुने पुकार। कबीर काया कजली बन पया, मन कुंचर मैं मंत, अंकस ज्ञान रतन है खेवट बिरला संत। कबीर राम रतन मुख कोथरी, पारख आगे खोल, कोई आए मिले गो गाह की, ले गो में गो मोल। कबीर राम नाम जान्यो नहीं, पाल्यो कटक कुटंब, तंदे ही मैं मर गयो बाहर पई ना बंब। कबीर आखी केरे माटके, पल पल गई बिहाए, मन जंजाल ना छोड़ई, जम दिया दमामा आए। कबीर तारवर रूपी राम है, फल रूपी बैराग, छाया रूपी साध है, जिन तजया बाद विवाद। कबीर ऐसा बीज बोए बारे मास फलंत, शीतल छाया गहर फल, पंखी केल करंत। कबीर दाता तरवर दया फल, उपकारी जीवंत, पंखी चले दिसावरी बिरखा सुफर फलंत। कबीर साधु संग प्राप्ति, लिखिया होए ललाट, मुक्त पदार्थ पाई है ठाक ना या कटकाट। कबीर एक कड़ी आदि करी, आदि हूं ते आद, भगतन सेती गोष्टे जो कीने सो लाभ। कबीर भांग माछली सुरा पान, जो जो प्राणी खाहे, तीर्थ व्रत नेम किए ते सबै रथा तल जाहे। नीचे लोहिन कर रहो ले सजन कट माहे, सब रस खेलो पीसो किसी लिखावो नाहे। आठ जाम चौ सठ करी, तो निरखत रह जियो, नीचे लोहिन क्यों करो सब कट देखो पियो। सुन सखी पी मह जियो बसे, जी में बसे के पियो, जियो पियो बुझो नहीं कट में जियो के पियो। कबीर बामन गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाहे, अर्ज उर्ज के पचमुआ चारो बेदो माहे। हर है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुनी ना जाए, कह कबीर गुर पली बुझाई, कीटी होए कह खाए। कबीर जो तुहे तो साध ब्रह्म की, शीस काट कर गोए, खेलत खेलत हाल कर, जो किश होए ता होए। कबीर जो तुहे तो साध ब्रह्म की, पाके से ती खेल, काची सरसों पेल के ना खल पही ना तेल। ढूंढत डोले अंध गत, अर चिंत नाही संत, कह नामा क्यों पाई है बिन भगतो भगवंत। हर सो हीरा छाड़ कै करे आन की आस, ते नर दो जग जाहेंगे सत पाखे रविदास। कबीर जो गृहो करे ता धर्म कर,

ठंडा पानी पियो। फरीदा देख पराई चोपड़ी ना तरसाए जियो। अज ना सुती कंत स्यो अंग मुड़े मुड़ जाए, जाए पछोड़ो हागणी तुम क्यों रहण विहाए। साहुरै टोई ना लह पेये नाही थाओ, परवातड़ी ना पुछई तन सो हागण नाओ। साहुरै पेये कंत की कंता गामा थाओ, नानक सो हागणी जो पावे बेपरवाह। नाती तोती संभ ही सुती आए निचिंद, फरीदा रही सो बेड़ी हिंगदी गई कथूरी गंद। जोबन जांदे ना डरा जे सह प्रीत न जाए, फरीदा कीती जोबन प्रीत बिन सुक गए कुमलाए। फरीदा चिंत खटोला वाण दुख ब्रह विछावन लेफ, एहो हमारा जीवना तू साहेब सच्चे वेख। बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान, फरीदा जितन बिरो न उपजै सोतन जान मसान। फरीदा ए विस गंदला तरिया खंड लिवाड़, इकरा हे दे रह गए इकरा दी गए उजाड़। फरीदा चार गवाया हंड कै चार गवाया सम, लेखा रब मंगेसिया तू आहो केरे कम। फरीदा दर दरवाजे जाए कै क्यों डिठो कड़ियाल, एहो ने दोसा मारी है हम दोसा दा क्या हाल। घड़िए घड़िए मारी है पैरी लह सजाए, सोहेड़ा कड़ियाल ज्यों दुखी रहन विहाए। बुढ़ा हुआ शेख फरीद कंबन लगी दे, जे सो वरिया जीवना पीतन हो सीखे है। फरीदा बार पराया बैसना साई मुझे ना दे, जे तू एवे रख सी जियो श्री रोले। कंध कुहाड़ा सिर कड़ा वन कै सर लोहार, फरीदा हां लोड़ी सहो अपना तू लोड़ै अंग्यार। फरीदा एक ना आटा अगला एक ना नाही लोण, अगे गए सिंजाप सन चोटा खासी कौन। पास दमा में छत सिर पेरी सडो रड, जाए सुते जीरान मैं थिए अतिमा गड। फरीदा कोठे मंडप माड़िया उसारे दे पी गए, कूड़ा सौदा कर गए गोरी आए पए। फरीदा खिंथण में खाए अगलियां जिंद ना काई मेख, वारी आपो अपनी चले मसाइक सेख। फरीदा दो दीवी बुलंदया मलक बैठा आए, गढ़ लीता कट लुटिया दीवड़े गया बुझाए। फरीदा वेख कपाह जेथिया जे सिर थिया तिलाहा, कमाद यार कागद कुन्ने कोयले आहा। मंदे अमल करें दिया ए सजाए ते नाहा, फरीदा कन मसला सूफ गल दिल काती गुड़वात, बाहर दिसे चानना दिल अंधियारी रात। फरीदा रती रत ना निकले जेतन चीरे कोए, जोतन रते रब स्यों तिन तन रत ना होए महला तीजा। एहो तन सबो रत है रत मिन तन ना होए, जो से रते अपने तिन तन लोभ रत ना होए। पै पया तन खीण होए लोभ रत विचों जाए, ज्यो बै संतर तात सुध होए त्यों हर का पाउ दुरमत मैल गवाए। नानक ते जन सोहणे जे रते हर रंग लाए, फरीदा सोई सवर ढूंढ लहो जिथो लबी वथ। छप्पड़ ढूंढे क्या होवे चिकड़ डुबे हथ, फरीदा नंडी कंत नारावे ओ वड्डी थी मुयास, तन कु केंदी गोर मैं तैसे ना मिलियास। फरीदा सिर पलिया दाढ़ी पली मुछा पी पलिया, रे मन गहले बावले माने क्या रलिया। फरीदा कोठे तुकन केतड़ा पिर नींदड़ी निवार, जो देह लदे गाण में गए विलाड़ विलाड़।
ਫਰੀਦਾ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ, ਏਤ ਨਾ ਲਾਏ ਚਿੱਤ, ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਆ ਤੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਸੀ ਮਿੱਤ। ਫਰੀਦਾ ਮੰਡਪ ਮਾਲ ਨਾ ਲਾਏ, ਮਰਗ ਸਤਾਣੀ ਚਿੱਤ ਧਾਰ, ਸਾਈਂ ਜਾਏ ਸਮਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਤੋ ਵੰਜਣਾ। ਫਰੀਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾਹੇ ਗੁਣ, ਤੇ ਕਮੜੇ ਵਿਸਾਰ, ਮਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਥੀ ਵਹੀ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ। ਫਰੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰ ਚਾਕਰੀ, ਦਿਲ ਦੀ ਲਾਹੇ ਪਰਾਂਦ, ਦਰਵੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀ ਐ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀਰਾਂਦ। ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੇ ਮੈਂਡੇ ਕੱਪੜੇ, ਕਾਲਾ ਮੈਂਡਾ ਵੇਸ਼ ਗੁਨ

वर्ष एक हो फिर ओ किने नौ पर चौलायो कहते है कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो हर नाम छोड़ दूजे लगे तिन के गुणों क्या कहो गुरदय मिलायो पिखिया जिब तू रखे तिव रहो पहर समाद सुना हो ज्ञान है आसन चढ़ो धर्म तनख कर गहे हो भगत सीले सर लड़े हो पै निरपो हरा टल मानो शब्द गुर ने जा गड्डे हो काम क्रोध लो मोह अपत पंच दूत बेखंडे आओ पलो पुहाल तेजो तना निरपद नाथ नानक बार गुर अमरदास सल पान तैं दल जितो इव युद्ध कर कन हर बूंद बसोरो मावल कुसुम बसंत ग्रंत नयावै रव सस्करण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन पल उन्ह जो गावै पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवै सवैये महल्ले चौथे के एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक मन पुरख निरंजन त्यावो गुर प्रसाद हर गुण सदगावो गुण गावत मन होए बिगासा सतगुर पूर जिने की आसा सतगुर से परम पद पायो अब नासी अब गाते आयो तिस भेटे दर दरना चंपै कल सहार तास गुण जंपै जंपो गुण बिमल सुजन जन के रे अमे नाम जाको फुरिया इन सतगुर सेव शब्द रस पाया नाम निरंजन और धरिया हर नाम रस गोविंद गुण गाहक चाहक तत् समत सरे कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर परे छुटत प्रवाह अमे अमरा पद अमृत सरोवर सद भरिया ते पीवै संत करै मन मज्जन पुबजनो सेवा करिया तिन पहु निवार अन पै पादीना शब्द मात्र ते उदर धरे कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर परे सतगुर मत गूढ़ बिमल सतसंगत आत्म रंग चलूल पया जाग्या मन कवल सहज प्रकाशया अपै निरंजन करै लहा सतगुर दयाल हर नाम दृढ़ाया तिस प्रसाद वस पंच करे कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर परे अनपव उन्मान अकल्यव लागी पारस पेटिया सहज करे सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए पंडार परे मेटिया जन्मात मरण पौ भागा चित लागा संतोख सरे कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर परे अपर परे पायो अपार हृदय अंतर तारियो दुख पंजन आत्म प्रबोध मन तत् विचारियो सदा चाहे हर पाए प्रेम रस आपे जाने सतगुर कै प्रसाद सहज से तीरंग माने नानक प्रसाद अंगद समात गुर अमर अमर वरतायो गुर रामदास कलुचरै तैं अटल अमर पद पायो संतोख सरोवर बसै अमे रस रसन प्रकाशै मिलत सांत उपजै दुरत दूरंतर नासै सुख सागर पायो दिनत हर मग न हुटै संजम सत संतोख सीर सनहु फुटै सतगुर प्रमाण बिदने सिरयो जग जस्तूर बजायो गुर रामदास कलुचरै तैं अपै अमर पद पायो जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक त्यायो तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दृढ़ायो नवनिध नाम निधान रिद्ध सिद्ध ता की दासी सह सरोवर मिलियो पुरख भेटियो अबनासी आदले भगत जित लग तरे सो गुर नाम दृढ़ायो गुर रामदास कलुचरै तैं हर प्रेम पदार्थ पायो प्रेम भगत प्रवाह प्रीत पुबली ना हुटै सतगुर शब्द अथाह अमे तारा रस गुटै मत माता संतोख पिता सरसै समायो आजोनी संपावयो जगत गुर बचन तरायो आप गात्या गोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो गुर रामदास कलुचरै तैं जगतो धारण पायो
जगतो धारण नाम निदान भगत पवतारण अमृत बूंद हर नाम बिसकी बिखै निवारण साहित रोवर फलो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाई है तन ते जनवट पागे ते मुक्ते पए सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुर रामदास कलुचर ते शब्द निशान मजायो से सदा सहे शावान संतोख सराय चाओ सदा सीर सन्ना हो सो है गुर शब्द समाचरियो नाम टेक संगाद बो है आजोनियो पालिया माल सदगुर संग निवास गुर रामदास कलुचर तो सह सरोवर वास गुर जिन कौ सो प्रसन्न नाम हरदय निवास है जिन कौ गुर सो प्रसन्न दुरत दूर अंतर नास है गुर जिन कौ सो प्रसन्न मान अभमान निवार है जिन कौ गुर सो प्रसन्न शब्द लग पव जल तार है परचो प्रमाण गुर पायो तिन सके अथो जन्म जग श्री गुरु शरण भज कल कब भुगत मुक्त सब गुरु लग सतगुर खेमा ताने जुग जूत समाने अनपौ नेजा नाम टेक जित भगत्या गाने गुर नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने एहो राज जोग गुर रामदास तुमहू रस जाने जनक सोए जिन जाने उन मन रथ तरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया।

निदान पावै, गुरमुख ज्ञान दुर्मत मैल धोवै जियो। सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़, तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो। धर्म कर्म पूरै सतगुर पाई है, जा की सेवा सिद्ध साध मुन जन, सुर नर जाचै शब्द सार एक लिव लाई है। फुन जानै को तेरा अपार, निरपौ निरंकार अकथ कथनहार, तुझे बुझाई है परम पूले संसार। छुट्टो जूनी संगार, जम को ना दंडकाल, गुरमत त्याई है मन प्राणी मुग्ध विचार। अहनिस जप धर्म कर्म पूरे सतगुर पाई है, हम बल बल जाऊं सतगुर साचे नाम पर। कवन उपमा देओ कवन सेवा सिरेओ, एक मुख रसना रसो जुग जोर कर। फुन मन बच कर्म जान, अंत दूजा नामान, नाम सो अपार सार, दिनो गुर रिध तार। नल कव पारस परस कच कंचना, नल कव पारस परस कच कंचना, हुए चंदना सुबास जास सिमरत अन तार। जाके देखत द्वारे, काम क्रोध ही निवारे जी, हम बल बल जाऊं सतगुर साचे नाम पर। राज जोग तख्त दियन गुर रामदास, प्रथमे नानक चंद जगत भयो आनंद, तारन मनुख जन कियो प्रगास। गुर अंगद दियो निदान अकथ कथा ज्ञान, पंचभूत बस कीने जमत ना त्रास। गुर अमर गुरु श्री सत कल युग राखी पत, अग्न देखत गत चरण कवल जास। सब विद्मान्यो मन तब ही पयो प्रसन्न, राजयोग तख्त दियन गुर रामदास। रड जिसे तारयो तरत अर व्योम, अर पवन ते नीर सर, अवर अनल अनाद कियो। सस रेख निस सूर दिन सैल, तरु फल फुल दियो। सुर नर सप्त समुन्दर के तारयो त्रिपवन जास, सोई एक नाम हर नाम सत पायो गुर अमर प्रगास। कच्चो कंचन पयो शब्द गुर श्रवणै सुनयो, बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख पणयो। लोहो होयो लाल नदर सतगुर जा तारै, पाहण माणक करै ज्ञान गुर कहो बिचारै। काठो श्रीखंड सतगुर कियो, दुख दरिद्र तिनके गए। सतगुरु चरण जन परसिया, से पस प्रेत सुर नर पए। जाम गुरु है वल तने क्या गर्व दिजय, जाम गुरु है वल लख बाहे क्या किजय। जाम गुरु है वल ज्ञान अर ध्यान अनन पार, जाम गुरु है वल शब्द साखी सो सच्चै कार। जो गुरु गुरु अहनस जपै, दास पट बेनत कह। जो गुरु नाम रिद मैं तरै, सो जन्म मरण दो थेरै। गुर बिन कोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवै। गुर बिन सुरत ना सिद्ध, गुरु बिन मुक्त ना पावै। गुर कर सच विचार, गुरु कर रे मन मेरे। गुर कर शब्द सपुन अग्न कटै सब तेरे। गुर नैन बैन गुर गुर करहो, गुरु सत कब नल कह। जिन गुरु ना देखियो नहो कियो, ते अक्यत संसार मह। गुरु गुरु गुर कर मन मेरे, तारन तरन समर्थ कल युग, सुनत समाद शब्द जिसके रे। फुन दुख नास सुखदायक सूरो, जो तरत ध्यान बसत तेह नेरे। पूरो पुरख हृदय हर सिमरत, मुख देखत अग जाहे परे रे। जो हर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत, गुरु गुरु गुर कर मन मेरे। गुरु मुख देख गुरु सुख पायो, हुती जो प्यास पी उस पिवन की। बंछत सिद्ध को बिद मिलायो, पूर्ण पो मन ठौर बसो। रस बासन से ओ जो दहंग दिस्तायो, गोबिंद वाल गोबिंद पुरी सम, जलन तीर विपास बनायो। गयो दुख दूर बरखन को, सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो। समरथ गुरु सिर हथ तरयो, गुर कीनी कृपा हर नाम दियो। जिस देख चरण अगन हरयो, निस बासर एक समान ध्यान, सो नाम सुने सुत पान डरयो। पन दास

श्री गुरु साहेब सब ऊपर करी कृपा, सत युग जंत्र ऊपर श्री प्रहलाद भगत उदरियं, हस्त कमल माथे पर धरियं, अलख रूप जी लख्या ना जाई, साधक सिद्ध सगल सरनाई, गुर के बचन सत जी तारो, मानस जन्म देह निस्तारो, गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए, गुर प्रसाद प्रभु पाईए गुर बिन मुक्त ना होए, गुरु नानक निकट

निरंजन जचना गुर प्रसाद पाई है परमार्थ सतसंगत सेती मन खचना। किया खेल बड़मेल तमाशा वाह गुरु तेरी सब रचना। अगम अनंत अनाद आद जिस कोय न जाने शिव ब्रंच तर ध्यान नित जिस वेद बखाने। निरंकार निर्वैर अवर नहीं दूसर कोई पंजन गण समरथ तरन तारन प्रभ सोई। नाना प्रकार जिन जग कियो जन मथरा रसना रसै श्री सतनाम करता पुरख गुरु रामदास चित्तै बसै। गुरु समरथ गह करिया ध्रुव बुद्ध सुमत सुमारन को फुन त्रम तुजा फहरंत सदा अग पुंज तरंग निवारण को। मथुरा जन जान कही जी साच सो और कशु ना विचारन को। हर नाम बोहित बड़ो कल मैं पवसागर पार उतारन को। संतत ही सतसंगत संग सो रंग रते जस गावत है। धर्म पंथ तरयो तरनी तर आप रहे लिव तार ना तावत है। मथुरा पन भाग पले उनके मन इच्छित ही फल पावत है। रव के सुत को तिन त्रास कहा जो चरण गुरु चितलावत है। निर्मल नाम सदा परपूर्ण शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर। गहर गंभीर अथाह अत बड सुबर सदा सबे दुरत नागर। संत मराल करे कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर। कल जब दुरत दूर कर बे कहो दर्शन गुरु सगल सुख सागर। जाको मन ध्यान तरे फिरत सगल जुग कबहो को पावे आत्म प्रगास को। वेद बाणी सहत बरंच जस गावे जाको शिव मन गह नात जात कबलास को। जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा जूट पेख किए फिरत उदास को। सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा तारी जी नाम की बढ़ाई दई गुर रामदास को। नाम निदान ध्यान अंतर्गत तेज पुंज तेहो लोग प्रगासे। देख दर्श पटक प्रम पजत दुख परहर सुख सहज बिगासे। सेवक सित सेवक सिख सदा अतलुबत आलस मुह जो कुसम सुभासे। विद्यमान गुर आप थप्यो थिर साचो तख्त गुरु रामदास। तार्यो संसार माया मद मोहत अमृत नाम दियो समरथ। फुन कीर्तवंत सदा सुख संपत रिद अर सिद्ध न छोड़े साथ। दान बड़ो अतवंत महाबल सेवक दास कयो एहो तथ। ताहे कहा परवाह काहू की जा कै बसीस धरयो गुर हथ। तीन पवन पर पूर रहो सोई अपन सरस कियो ना जगत कोई। अपने आप ही ओ पायो सुर नर असुर अंत नहीं पायो। पायो नहीं अंत सुरे असुरे नर गण गंधर्व खोजंत फिरे। अब नासिया चाला जोनी संपाओ पुरखोत में आपार परे। करण कारण समरथ सदा सोई सर्व जी मन त्यायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तैं हर परम पद पायो। सतगुरु नानक भगत करी एक मन तन मन धन गोबिंद दियो। अंगद अनंत मूर्त निज तारी अगम ज्ञान रस रसयो हियो। गुर अमरदास करता

नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा पुब भगत हर के जुगण अमरीक जय देव त्रिलोचन नामा अवर कबीर पण तिन को अवतार भयो कल पिंतर जस जगत्र पर छायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तै हर परम पद पायो मनसा कर स्मरंत तुझै नर काम क्रोध मिट्यो जो तिन बाचा कर स्मरंत तुझै तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिण कर्म कर तो दर्श परस पारस सरबल भट जस गायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तै हर परम पद पायो जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटै खेन जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावै जे सतगुर सिमरंत रिद्ध सिद्ध नवनिद पावै सोई रामदास गुर बल पाण मिल संगत तन तन करो जे सतगुर लग प्रभ पाई है सो सतगुर सिमरो न रो जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करत ना छोड्यो पास ताते गौहर ज्ञान प्रगट उजियारो दुख दरिद्र अंधियार को नास कव कीर्त जो संत चरण मुड़ लागे तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास जिव अंगद अंग संग नानक गुर तिव गुर अमरदास कै गुर रामदास जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो निसबासर हर चरण निवास ताते संगत सगन पाए पौ मान तुम मली अगर प्रगट सुबास ध्रुव प्रहलाद कबीर त्रिलोचन नाम लैत उपजो जो प्रगास जेह पिखत अत होए रहस मन सोई संत सहार गुरु रामदास नानक नाम निरंजन जाना कीनी भगत प्रेम लिव लाई ताते अंगद अंग संग पयो सायर तिन शब्द सुरत की नींव रखाई गुर अमरदास की अकथ कथा है एक जीही कश कही ना जाई सोडी सिरिट सगल तारन कहो अब गुर रामदास कहो मिली बढ़ाई हम अब गुण परे एक गुण नाही अमृत शाड बिखै।

एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरनाई मोह मल बिवस कियो काम गै केस पछाड़ियो क्रोध खंड प्रचंड लोभ अपमान स्यो चाड़ियो जन्म काल कर जोड़ हुक्म जो होए सो मन्नै भव सागर बंदियो सिख तारे सो प्रसन्न सिर आत पात।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद श्लोक वारा ते वधीक महला पहला उतंगी पै ओहरी गहरी गंभीरी ससड़ सुइया किव करी निवण ना जाए थनी गच जे लगा गिड़वड़ी सखिए तौल हरी से पी टहंदे डिठ मैं मुंद ना गर्भ थनी सुन मुंदे हर नाखिए गूड़ा वैण अपार पहला वत सियाण कै ता की चै व्यापार दोही दिचै दुर्जना मित्रा को जयकार जित दोही सज्जन मिलन लहु मुंदे विचार तन मन दी जय सज्जना ऐसा हसन सार तिस सौ नेहो ना की चई जे दिसै चलन हार नानक जिनी एव कर बुझिया तिना मिटो कुरबान जे तू तारू पाण ताहू पुछ तड़न कल ताहू खरे सुजान वञाए नी कपरी चढ़ चखड़ ओहाड़ लहरी वहन लखे सरी सतगुर स्यों आलाए बेड़े डुबन नाहे पौ नारक दुनिया कैसी होई।

लियो जरा तन जीत, कहो नानक पज हर मना, औद जात है बीत। बिरद पयो सूजै नहीं, काल पहुंचो आन, कहो नानक नर बावरे, क्यों ना पजै भगवान। धन धारा सम

तन तन संपै सुख दियो अर जेह नीके धाम कहो नानक सुन रे मना सिमरत काहे नाराम सब सुख दाता राम है दूसर नाहिन कोए कहो नानक सुन रे मना तह सिमरत गत होए जह सिमरत गत पाई है तेह पजरे तै मीत कहो नानक सुन रे मना औद कटत है नीत पांच तत् को तन रचियो जानो।

काट काट में हरजू बस संतन कहो पुकार कहो नानक ते भज मना पौने दे उतर है पार सुख दुख जेह पर सह नहीं लोभ मोह अभमान कहो नानक सुन रे मना सो मूर्त भगवान उस्त निंदया नाहे जेह कंचन लोह समान कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान हरख सोग जा कै नहीं बैरी मीत समान कहो नानक सुन रे मना मुक्त

कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। जे बिखिया सगली तजी, लियो पेख बैराग। कहो नानक सुन रे मना, तेह नर माथे पाग। जे माया ममता तजी, सब ते पयो उदास। कहो नानक सुन रे मना, तहकट ब्रह्म निवास। जह प्राणी हौं मैं तजी, करता राम पशान। कहो नानक वह मुक्त नर, एह मन सच।

कहो नानक हर भजन बिन परत ताहे जम फंद। सुख मैं बहु संगी पै दुख मैं संग ना कोए। कहो नानक हर भज मना अंत सहाई होए। जन्म जन्म परमत फिरयो मिट्यो न जम को त्रास। कहो नानक हर भज मना निरपै पावै बास। जतन बहुत मैं कर रहे हो मिट्यो न मन को मान। दुर्मत स्यो नानक फदयो राख लेहो भगवान। बाल जवानी अर बिरद फुन तीन अवस्था जान। कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सभी मान। करणो हो तो सोना कियो परयो लोभ कै फंद। नानक समयो रम गयो अब क्यों रोवत अंद। मन माया मैं रम रहे हो निकसत नाहिन मीत। नानक मूर्त चित्र ज्यों छाड़त नाहन पीत। नर चाहत कश और की और पई। चितवत रहे उठ गौर नानक फासी गल परी। जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो ना कोए। कहो नानक सुन रे मना हर पावै सो होए। जगत पिखारी फिरत है सबको दाता राम। कहो नानक मन सिमरत है पूर्ण होवै काम। झूठे मान कहां करे जग सुपने ज्यों जान। इनमें कछ तेरो नहीं नानक कहो बखान। गर्भ करत है देह को बिन सैशन में मीत। जह प्राणी हर जस कहो नानक तेह जग जीत। जेह कट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान। तेह नर हर अंतर नहीं नानक साची मान। एक भगत भगवान जह प्राणी कह नाहे मन। जैसे सुकर सुवान नानक मानो ताहे तन। स्वामी को गृह ज्यो सदा स्वान तजित नहीं नित। नानक एह बिद हर पयो एक मन होए एक चित। तीर्थ बरत अरदान कर मन में तरे गुमान। नानक ने फल जात तह ज्यो कुंचर इशनान। सिर कंपियो पग डग मगे नैन ज्योत ते हीन। कहो नानक यह बिद पई तऊ नहर रसलीन। निज कर देखियो जगत मैं को काहू को नाहे। नानक थिर हर भगत है तह राखो मन माहे। जग रचना सब झूठ है
जान ले हो रे मीत कह नानक थिर नारा।

जो अनहोनी होए, एहो मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। जो उपजियो सो बिरस है, परो आज कह काल, नानक हर गुण गाए ले, छाड़ सगल जंजाल। दोहरा बल छुटक्यो बंधन परे, कशु न होत उपाय, नानक सब किश तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय। संग सखा सब तज गए, को न निभयो साथ, कहो नानक एह बिपत मैं, टेक एक रघुनाथ। नाम रहयो

राम नाम उर मैं गयो, जाके सम नहीं कोए। जे सिमरत संकट मिटे, दर्श तुहारो होए। मुंदावणी महला पंजवां, थाल विच तिन वस्तु पईयो, सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकर का पयो, जिसका सबस आधारो। जे को खावे जे को पुंचे, तिसका होए उधारो। एहे वस्त तजी नह जाई, नित नित रख उर तारो। तम संसार चरण लगतरी है, सब नानक ब्रह्म।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग माला, राग एक संग पंच बरंगन, संग अलाप आठो नंदन। प्रथम राग पैरो वै करही, पंच राग नी संग उचरही। प्रथम पैर भी बेलावली, पुनिया की गावे बंगली, पुन असलेखी की पई बारी। ए पैरों की पंचो नारी, पंचम हरख दिशाख सुनावे, बंगालम मदमाद वगावे। ललत बिलावल गावही अपनी अपनी पांत, अष्टपुत्र पैरव के गावे गायन पात्र। दुतिया माल कौसकिया लापे, संग रागनी पांचौ थापे। गोंड करी अर देव गंधारी, गंधारी सी हुती उचारी। तनासरी ए पांचौ गाई, माल राग कौशक संग लाई। मारू मस्त अंग मेवारा, परबल चंड कौशक उबारा। खौ खटियाओ पौरा नद गाए, अष्टमाल कौशक संग लाए। पुन आयो हिंडोल, पंचनार संग अष्ट सुत। उठह तान कलोल, गायन तार मिला वही। तेलंगी देव करी आई, बसंती संदूर सुहाई। सरस अहीरी ले पार जा, संग लाई पांचो वार जा। सुरमानंद पास कर आए, चंद्रबिंब मंगलन सोहाए। सरस बान औ आहे बिनोदा, गावे सरस बसंत कमोदा। अष्टपुत्र मैं कहे सवारी, पुन आई दीपक की बारी।

गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतले और अम्मा कमल कुसुम चंपक के नमा गौरा औ कानरा कल्याणा अष्टपुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राग वै गावै पांचो संग बरंगन लावै बैरारी करनाटी तरी गवरी गावै आसावरी तेह पाछे सिंधवी आलापी श्री राग स्यो पांचो थापी सालू सारग सागरा और गोंड गंभीर अष्टपुत्र श्री राग के गुंड कुंभ हमीर खष्ट मेघ राग वै गावै पांचो संग बरंगन लावै सोरठ गोंड मलारी तुनी पुन गावै आसा गुन गुनी ऊचे सुरसू हो पुन कीनी मेघ राग स्यों पांचो चीनी बैरा तार गज तार के दारा जबली तार नट औ जल तारा पुन गावे शंकर औ श्यामा मेघ राग पुत्रन के नामा खष्ट राग उन गाए संग राग नीतीस सब पुत्र रागन के अठारह दस बीस खष्ट राग उन गाए संग राग नीतीस सब पुत्र रागन के अठारह दस बीस वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु

अरदास एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई ते आए फिरंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठै शब्द खुजाए तेग बहादुर सिमरे है कर रावण दे आवै ताए सब थाई हुई सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पंथ दे वाली सब थाई हुई सहाय दसा पातशाहियां के स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। गुरु साहिब जी दे पंज प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हठियां जपियां तपियां जिन्हां ने तेरा नाम जपया वंड के छकिया देग चलाही तेग वाही देख के अंडिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई का ध्यान करके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां ध्यान करके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हे सीस दिते बंद बंद कटवाए चरखड़ियां ते चढ़े आरिआं नाल चिराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई का ध्यान करके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। आप जी दे गुरसिखां नूं गुरसिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नामदान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान आप जी दे गुरसिखां दा मन नीवा मत उची मत पतकारा खाप अकाल पुरख वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। नाम चितावै चितावन का सदका सर्व सुख होवै बिरद की पैज रहे पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान करके खालसा साहिब बोलो श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। हे महाराज श्री निरंकार ज्योति स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी दसा पातशाहियां के स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। आप जी दे हजूर ऐस वक्त अरदास बेनती है आप जी ने महान बख्शिश कीती है पातशाह जीओ आप जी दा ओट आसरा लैंदिया होया सेवक परिवार ने सहज पाठ आरंभ करवाया सी सहज पाठ दी सीडी दी सेवा कीती है सीडी बनाने दी सेवा करदिया अनेका भुलां होईयां होणगियां गुरु अते गुरु की संगत बख्शण योग है पाठ दा फल सेवक परिवार नूं बख्शण दी कृपालता करनी जी पाठी सिंह पासों पाठ करदिया अनेका भुलां होईयां होणगियां गुरु अते गुरु की संगत बख्शण योग है बख्शण दी कृपालता करनी। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आप जी ने महान बख्शिश कीती है सहज पाठ दी निर्विघ्नता सहित समाप्ति हुई है सेवक परिवार वालों आप जी नूं सोहणे रुमाले पछाके हाजिर होए हन आप जी ने अंगीकार करने सेवकां दे पर्दे कजने सेवक परिवार नूं गुरसिखी ते नामदान दी दात बख्शिश करनी पातशाह चढ़दियां कला बख्शिश करनियां पातशाह कारोबार च बरकतां पाउणियां अंग संग सहाई होना छे पौड़ियां आनंद साहिब दा पाठ होया बाणी पढ़ी सुनी सचखंड विखे प्रवान करनी बाणी दा भाव सेवक परिवार दे हिरदयां विखे वसाउणा सेवक परिवार वालों पवित्र कड़ाह प्रसाद दी देग ते लंगर हाजिर है आप जी दर ते प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरते जो छके आप जी दा पवित्र नाम जपे सुख होवे नाम चित आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा।

जी मान्यो प्रगट गुरा की देह, जो प्रभ को मिल बोच है खोज शब्द में ले। राज करेगा खालसा आकी रहे न कोए, ख्वार

0: बोले सोनिहाल सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहेगुरु साहेब जीओ, सो कहो टल गुर सेवी अहनस सहज सुभाए, दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। टोडी महला पंजवां, माई मेरे मन को सुख, कोट आनंद राज सुख भुगवै, हर सिमरत बिनसै सब दुख। माई मेरे मन को सुख, कोट आनंद राज सुख भुगवै, हर सिमरत बिनसै सब दुख। रहाओ कोट जन्म के किल बिख नासै, सिमरत पावन तन मन सुख। देख स्वरूप पूर्ण भई आसा, दर्शन भेटत उत्तरी भुख। चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध, काम तेन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गही सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख। चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध, काम तेन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गही सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मुह पख सार असंख मोन लिवलाय तार कुदरत कवन कहां विचार वारिया न जावा एक बार जो तुद पहावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध कोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पख खाहे।

गावह चित गुप्त लिख जान है लिख लिख धर्म विचारे गावह ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सुवारे गावह इंदासन बैठे देवतियां दरनाले गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावह वीर करारे गावन पंडित पढ़ नरखी सरे जोग

तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध विचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सर जोग

जान। तुम पार ब्रह्म वे अंत जी, तेरे क्या गुण आख बखान। जो सेव है तुद जी, जन नानक तिन कुरबान। हर त्याव है तुद जी, से जन जुग मह सुखवासी, से मुक्त।

जल बुझी पाया गुरमुख ज्ञान रहाओ। अंतर की गत जानिए गुर मिलिए शंख उतार, मुया जित कर जाइए तित जीम दया मर मार। अनहद शब्द सुहावणी।

एहो मनो मूर्ख लोभिया लोभे लगा लोभान शब्द न पीजै साकता दुर्मत आवन जान साधु सतगुरु जे मिलै ता पाईऐ गुणी निधान मान रे हों मैं छोट गुमान हर गुर सरवर सेव तू पावह दरगह मान रहाओ राम नाम जप दिन सरात गुरमुख हर तन जान सब सुख हर रस भोगणे संत सभा मिल ज्ञान नित अहनस हर प्रभ से व्या सतगुर दिया नाम कूकर कूड़ कमाई है गुर निंदा पचै पचान परमे भूला दुख कणो जम मार करे फुलहान मन मुख सुख न पाइए गुरमुख सुख सुभान ऐसे तंद पिटाइए।

जिस सतगुर पुरख ना भेटियो सो भाव जल पचाए पचाए यो मानक जियो निर्मोल है यो कौडी बदलै जाए जिन्ना सतगुर रस मिले से पूरे पुरख सुजान गुर मिल भाव जल लंघी है।

गया पछताए। जिस नदर करे सो उबरे हर से पील बलाए। देखा देखी सब करे मन मुख बूझ ना पाए। जिन गुरमुख हृदय शुद्ध है।

परे से जन शब्दे सोहने तित सच्चा दरबार गुरुमुख सच्चा शब्द रते आप मेले करतार गुरमती सच सलाहना गुरमती सच सलाहना जिसदा अंत ना पारावार घट घट आपे।

जे सौ तीर्थ नहाए बहुबिद कर्म कमावंदे दूनी मल लागी आए पड़िया मैल न उतरे पूछ हो ज्ञानियां जाए मन मेरे गुर शरण आवे ता निर्मल होए

जिन्ना सतगुरु सिउ चित लाया से पूरे प्रधान जिन कौ आप दयाल होए तिन उपजै मन ज्ञान जिन कौ मस्तक लिखिया तिन पाया हर नाम मन मेरे एको नाम ते आए सर्व सुखां सुख उपजै।

आप होवा मेहरबान, सच महल घर पाया गुर का शब्द पछान। भगत जना कौ राखदा अपनी कृपा तहार, हलत पलत मुख उजले साचे के गुणसार। आठ पहर गुण सार दे रते रंग अपार, पार ब्रह्म सुख सागरो नानक सद बलिहार। श्री राग महला पंजवा, पूरा सतगुर जे मिलै पाइय शब्द निधान। कर कृपा प्रभ अपनी जपिय अमृत नाम, जन्म मरण दुख काटिय लागै सहज ध्यान। मेरे मन प्रभ शरणाई पाए, हर दिन दूजा को नहीं एको नाम त्याए। रहाओ कीमत कहन न जाइए सागर गुणी अथाह, वडभागी मिल संगति सच्चा शब्द विसाह। कर सेवा सुख सागर सिर शाह पातशाह, चरण

अपार सखा सहाई अत वड्डा ऊंचा वड्डा अपार बालक बिरद ना जानिए निहचल तिस दरबार जो मंगिया सोई पाईए निधारा आधार जिस पेखत किल विख हिरहै मन तन होवै शांत एक मन एक त्याईए मन की लाहे प्रांत गुण निदान नव तन सदा पूर्ण जाकी दात सदा सदा आराधिए दिन विसरहो नहीं रात जिनका पूर्व लिखिया तिनका सखा गोविंद तान मान तहन अर्पी सबो सगल वारिये ए जिंद देख सुने हजूर साध कट कट ब्रह्म रविंद अकिरत कणा नु पालदा प्रभ नानक सद बख्शिंद श्री राग महला पंजवां।

नाम अमृत नगर निहाल मन मेरे सदगुर सेवा सार करे दया प्रभ अपनी एक निमख न मनहो विसार रहा।

थान थनंतर रब रहया प्रभ मेरा परपूर सच पातशाही अमर सच सच्चे सच्चा थान सच्ची कुदरत धारियन सच सिरजोन जहान नानक जपिए सच नाम हों सदा सदा कुर्बान श्री राग महला पंजवा।

इच्छे फल पुंच तुम सब चूकै सोग संताप रहाओ। जिस कारण तन तहरिया सो प्रभ डिठा नाल। जल थल महियल पूरिया प्रभ अपनी नदर निहाल। मन तन निर्मल होया लागी साच प्रीत। चरण भजे पार ब्रह्म के सब जप तप तिन ही कीत।

साची पूंजी सच संजमो आठ पहर गुण गाओ कर कृपा प्रभ पेटिया मरन नावन जाओ मेरे मन हर भज सदा एक रंग घट घट अंतर रव रहया सदा सहाई संग रहाओ सुखा की मित क्या गणी जान सिमरी गोविंद जिन चाखया।

रहाव, सगल पदार्थ तिस मिले। सगल पदार्थ तिस मिले जिन गुर डिठा जाए, गुर चरणी जिन मन लगा सेवड पागी माए। गुरदाता समरथ गुर, गुर सब मह रहया समाए। गुर परमेश्वर पार ब्रह्म, गुर डुबदा लय तराए। कित मुख गुर साला ही है, करण कारण समरथ, से मथे ने चल रहे जिन गुर तारिया हाथ। गुर अमृत नाम पिया लिया, जन्म मरण का पथ, गुर परमेश्वर सेविया पै भंजन दुख लथ। सतगुर गहर गंभीर है, सुख सागर अगखंड, जिन गुर सेविया अपना, जमदूत न लागे डंड। गुर नाल तुल न लगई, खोज डिठा ब्रह्मांड, नाम निधान सतगुर दिया, सुख नानक मन महमंड। श्री राग महला पंजवां।

आधार तिसहत आवहु मन मेरे सर्ब को आधार गुर के चरण मन माहे त्याय गुर के चरण मन महे त्याए छोड़ सगल स्यान पां साज शब्द लिबलाए रहाओ दुख क्लेश ना पौ व्यापै गुर मंत्र हृदय होए कोट जतना कर रहे गुर बिन तरयो ना कोए देख दर्शन मन साधारे पाप सगले जाहे हौं तिन कै बलिहार नै जे गुर की पैरी पाहे साध

करणी सार, आप छोड़ सब होए रेणा, जिस देव प्रभ निरंकार, जो दिसै सो सगल तू है पसरिया पासार, कहो नानक गुर परम काटिया सगल ब्रह्म विचार, श्री राग महला पंजवां।

पद पुरख सुजाना रहाओ। मान अभिमान मंधे सो सेवक नाही, तत समदर्शी संत हो कोई कोट मंदाही। कहन कहावन इहो कीरत करला, कथन कह

सतगुर शरणी आया बाहुड़ नहीं बिनास। हर नानक कदे न विसरो इहो जियो पिंड तेरा सास। श्री राग महला पंजवा संत।

नानक गुर शरणागति मरै नहावै जाय। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग महला पहला घर पहला अष्टपदियां आख आख मन भावना ज्यों ज्यों जापै वाए जिसनो वाए सुनाई है सो केवड़ तित थाए आखण वाले जेतड़े सब आख रहे लिवलाए बाबा।

सच्चो सच्चा आखिए सच्चे सच्चा थान जिन्नी सच्चा मन्या तिन मन सच ध्यान मन मुख सूचे जानी है गुरमुख जिन्ना ज्ञान।

हुक्मी साच समाहे नानक जो तिस पावै सो थियै इन्ना जनता वस किश नाहे श्री राग महला पहला मन झूठै तन झूठ है जिहवा झूठी होए मुख झूठै झूठ बोलना क्यों कर सूचा होए बिन अब शब्द ना मांजिए साचे ते सच होए।

श्री राग महला पहला गुर ते निर्मल जानिए निर्मल दे शरीर निर्मल साचो मन वसै सो जाने अब पीर सहजे

हार, हाट पटनगढ़ कोठड़ी सच सौदा व्यापार। ज्ञान अंजन पै पंजना देख निरंजन पाए, गुप्त प्रगट सब जानिए जे मन राखे ठाए।

शब्द मरे सो मर रहे फिर मरे न दूजी वार, शब्द ही ते पाई है हर नामे लगे प्यार, बिन शब्द जग भूल।

राम जप हो सुख हो बिन गुर प्रेम न पाई है शब्द मिले रंग होए रहाओ गुर सेवा सुख पाई है हर वर सहज सिंगार सच माने तिर से जड़ी गूड़ा हेत प्यार गुरमुख जान सियाणी है गुर मेली गुण चार साच मिले।

का हार संत सभा सुख उपजय गुरमुख नाम आधार खिन मह उपजय खिन खपै खिन आवै खिन जाए शब्द पछाण।

पीर रे मन ऐसी हर्ष्यो प्रीत कर जैसी चात्रक में सार पार थल हरियावले एक बूंद न पवै खे सार पार थल हरियावले एक बूंद न

नानक दर कर एक है अवर न दूजी जाए। श्री राग महला पहला। मनमुख भुलै भुलाइए फूली ठौर न काए। गुरबिन को ना दिखावई अंधी आवै जाए। ज्ञान पदार्थ खोए।

पहले सतारह अष्टपदियां श्री राग महला तीजा कर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुरमुख कृपा।

मन मुख पात गवाई, बिन सतगुर को मग न जाने अंधे ठौर न काई, हर सुखदाता मन नहीं वसिया अंत गया पछताई। तेई अड़े जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया, आन दिन भगत करह।

पंखी बिरख सुहावड़े ऊट है चौ दिस जाए जेता ऊट है दुख कणे नित दाज है तै दिल लाहे बिन गुर महल ना जापई ना अमृत फल पाहे गुरमुख ब्रह्म हरियावला साचै सहज सुभाए शाखा तीन निवारिया एक शब्द लिवलाए अमृत फल हर एक है आपे देखवाए मनमुख ऊबे सुख गए ना फल तिन्ना छाऊ तिन्ना पास न बैसिय ओना कर ना गिराऊ कटिय है तै नित जालिय है ओना शब्द

समाए हर निर्मल अत उजला बिन गुर पाया ना जाए पाठ पढ़े ना बुझई भेखी परम भुलाए गुरमति हर सदा पाया रसना हर रस

ब्रह्म जाए। नाम पदार्थ पाईऐ गुरमुख सहज सुभाए, बिन गुर गुण ना जापनी बिन गुण भगत ना होए, भगत वसल हर मन वसिया सहज मिलिया प्रभ सोए। नानक शब्दे हर सा लाहीऐ करम प्राप्त होए, श्री राग महला तीजा माया मो मेरे प्रभ कीना आप भरम पुलाए। मन मुख कर्म करहै नहीं बूझ है बिरथा जन्म गवाए, गुरबाणी इस जग मह चानन।

शब्द जीवत मरै गुरमुख भव जल तरण वड्डै भाग नाउ पाइयै गुरमत शब्द सुहाई आपे मन वसिया प्रभ करता सहजे रहया समाई एक ना मनमुख शब्द न पावै।

जियो हो सतगुर बिट हो कुमाया जिन भ्रम भुला मार्ग पाया नदर करे जे अपनी आपे लै रलाए जियो तू सबना माह समाया तिन करतै आप लुकाया नानक गुरमुख प्रगट होया जां कौ जोत धरी करतार जियो आपे खसम निवाजया जियो पिंड दे साजया अपने सेवक की पैज रखिया दोए कर मस्तक धार जियो।

सब सचो सच वर्तदा जिस पावै तिसै बुझाए जियो गुर प्रसादी पाया तिथै माया मोह चुकाया कृपा करके अपनी आपे लै समाए जियो गोपी ने गोवालिया तुद आपे गोए उठा लिया हुक्मी भांडे साजया तू आपे भन्न सवार जियो जिन सतगुर स्यों चित लाया तिन दूजा भाव चुकाया जिन सत

तुद विटहु कुर्बान जियो। हर इठै नित ध्याएंदा, मन चिंदी सो फल पाएंदा। सबे काज सवारियन, लाहियन मन की भुख जियो। मैं छड़िया सबो तंदड़ा, गुसाई सेवी सचड़ा।

पात बटाया, गुरमुख लाहा ले गए मनमुख चले मूल गवाए जियो। तू वरना चिहना बाहरा, हर दिसह हाजर जाहरा, सुन सुन तुझे ध्यान दे, तेरे भगत रते गुणतास जियो। मैं जुग जुग दई ऐसे बड़ी, गुर कट्टी मेहंदी जेवड़ी, हों।

तीर्थ वर्त सुच संजम नाही, कर्म धर्म नहीं पूजा, नानक पाए भगत निस्तारा, दुविधा व्यापै दूजा। तीजै पहरै रैण कै वणजारिया मित्रा, सरहंस उलथड़े आए, जोबन कटै जरुआ जणै, वणजारिया मित्रा आम कटै दिन जाए, अंतकाल पछतासी, अंधले जां जम पकड़ चलाया।

जा रहा मित्रा अवगण खड़सन बन गुण संजम जावे चोट न खावे ना तिस जमन मरना काल जाल जम जोह न सकै पाए भगत।

धन चितवै धन संचवै वणजारिया मित्रा। हर नामा हर ना संभाल, हर नामा हर हर कदे ना संभालै, जे होवै अंत सखाई। इहो धन संपै माया झूठी, अंत छोड़ चलिया पछताई। जिसनु कृपा करे गुर मेले, सो हर हर नाम संभाल। कहो नानक तीजै पहरै प्राणी, से जाए मिले हर नाल। चौथे पैरे रहन कै वणजारिया मित्रा। हर

सुहेले। कर्म धरती शरीर जुग अंतर जो बोवै सो खात। कहो नानक भगत सोह है दरबारे मन मुख सदा पवात।

हर हर दर्शन पिखै, हर हर अपनी कृपा करे। गुरमुख सोहरड़ै कम सिखै, सोहरड़ै कम सिखै गुरमुख, हर हर सदा ध्याए। सहिया विच फिरै सुहेली, हर दरगाह बां लुडाए। लेखा धर्म राय की बाकी, जप हर हर नाम के रखै। मुंद इयाणी पेयड़ै, गुरमुख हर दर्शन दिखै। व्याह हुआ मेरे बाबुला, गुरमुखे हर पाया। अज्ञान अंधेरा कटिया, गुर ज्ञान प्रचंड बलाया। बलिया गुर ज्ञान अंधेरा बिनसिया, हर रतन पदार्थ लाधा। हौं मैं रोग गया दुख लाथा, आप आपै गुरमत खादा।

सुहेला गुर सतगुर दान दिवाया खांडवर भांड हर सोभा होई इहो दान ना रलै रलाया होर मन मुख दाज जे रख दिखा लै सो कूड़ अहंकार कच पाजो हर प्रभ मेरे बाबूला हर देव हो दान मैं दाजो हर राम राम मेरे बाबूला फिर मिल तन वेल वदंदी हर जुग है जुगो जो

जिन्नी गुरमुख नाम त्याया हर पुरख न कभी बिन सह जावे नित देवे चढ़े सवाया नानक संत संत हर एको जब हर हर नाम सोहंदी हर राम राम मेरे बाबुला फिर मिल तन वेल वदंदी।

गोविंद नाम संभाले मन प्यारिया जी मित्रा हर निभ तेरे नाले संग सहाई हर नाम त्याई बिरथा कोई ना जाए मन चिंदे से ही फल पावे चरण कमल चित लाए जल थल पूर रहया बनवारी घट घट नजर निहाले नानक सिख दे मन प्रीतम साध संग भ्रम जाले मन प्यारिया जी मित्रा हर बिन झूठ पसारे।

दुख मिटाया। चित्रगुप्त का कागद फारिया, जम दूता कछु न चली। नानक सिख दे मन प्रीतम, हर लदे खेप सवली।

हर नाम जपत परगासो सिमर स्वामी सुख हैगामी इच्छ सगली पुनिया पुरबे कमाए श्री रंग पाए हर मिले चिरी बिछुनिया अंतर बाहर सरबत रविया मन उपजया विश्वासो नानक सिख दे मन प्रीतम कर संतां संग निवासो।

सतगुर तुठे लड़ली ने लाए नौ निद पाए नाओ सर्वस ठाकुर दीना नानक सिख संत समझाई हर प्रेम भगत मन लीना श्री राग के।

हो, जस नानक आप सुनियो हे संत। प्रेम ठगौरी पाए रिझाए, गोविंद मन मोहया जियो। संतन कै प्रसाद अगाध कंठे लग सोहया जियो। हर कंठ लग सोहया, दोख सब जोहया। भगत लखियन कर बस पए, मन सब सुख बुठे। गोविंद तुठे, जन्म मरना सब मिट गए।

हर रंग रत हर त्याव हो हर प्रभ सत गुरबचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत रहाओ जिनको पूर्व लिखिया से आए मिले गुर पास सेवक पाए बन जा रिया मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास तन

मन मूर्ख मिलै सजाए, जिन जियो पिंड दिता तिस कब हूं ना चेतै, जो देंदा रिजक संबाहे, जमका फाहा गल हुन कटिए, फिर आवै जाए, मन मुख किशु न सू

मुख उजले हर दरगाह पहंदे जाही। सलोक महला दूजा जो सिर साई नानवै सो सिर दी जय डार नानक जिस पिंजर मह बिरहा नहीं।

कनक कलश एक पाया तिसमह तार चुवै अत निर्मल रसमह रसन चुआया। एक जो बात अनूप बनी है पवन प्याला साजया तीन पवन मह एको जोगी कहो कवन है राजा।

प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला हम बारिक दीन करहो प्रतपाला मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा गुर जल मिल कमल विकसै जियो मैं बिन गुर देखे नींद ना आवे मेरे मन तन वेदन गुर बिरहो लगावे हर हर दया करहो गुर मिल हो जन नानक गुर मिल रहसै जियो माज महला चौथा हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए हर हर नाम कथा नित सुनिए मिल सतसंगत हर गुण गाए जग पौजल दुत्तर तरिए जियो आओ सखी हर

अमृत रस सच अमृत बोली गुर पूरै अमृत लीचै जियो हर सत संगत सत पुरख मिलाइए मिल सत संगत हर नाम ध्याइए नानक हर कथा सुनी मुख बोली गुरमत हर नाम

तू आपे मन मुख जन्म पवाए है। नानक दास तेरा बलिहारे सब तेरा खेल दसहरा जियो। माज महला पंजवा अनहद वाजै सहज सुहेला शब्द आनंद करे सद केला। सहज गुफा महताड़ी लाई आसन ऊच सवारिया जियो। फिर घिर अपने ग्रह में आया जो लोड़ींदा सोई पाया। तृप्त अगाए रहया है संत हो गुर अनपौ पुरख दिखारिया जियो। आपे राजन आपे लोगा आप निर्वाणी आपे भोगा। आपे तख्त बह सच न्याई सब चूकी कूक पुकारिया जियो। जेहा डिठा मैं ते हो कहया तिस रस आया जिन भेद लहया।

भाग बनाया, तित कर सखिए मंगल गाया, आनंद विनोद तितै कर सोह है, जो धन कंत सिंगारी जियो। सा गुणवंती सा वडभागण, पुत्रवंती सीलवंत सोहागण, रूपवंत सा सुगड़ विचखण, जो धन कंत प्यारी जियो। अचारवंत साई परधाने, सब श्रृंगार बने तिस ज्ञाने, सा कुलवंती सा सबराई, जो पिर कै रंग सवारी जियो। महिमा तिसकी कहन ना जाए, जो पिर मेल लई अंग लाए।

जोगी बहुड़ बहुड़ उठता वै जियो, कर कृपा मोहे साध मिलाया, मन तन शीतल धीरज पाया, प्रभ अविनाशी बसिया कट पीतर, हर मंगल नानक गावै जियो। माज महला पंजवा, पार ब्रह्म अपरंपर देवा, अगम अगोचर अलख अपेवा, दीन दयाल गोपाल गोविंदा, हर ध्यावह गुरमुख गाती जियो। गुरमुख मधुसूदन निस्तारे, गुरमुख संगी कृष्ण मुरारे, दयाल दमोदर गुरमुख पाइय, होरत कितै न पाइय।

कै हर हर सोई भगत एकांती जियो। अमोग दर्शन बेअंत अपारा, वड समरथ सदा दातारा। गुरुमुख नाम जपिय तित तरिय, गत नानक विरली जाती जियो। माज महला पंजवां,

दयाल रंगीले गहर गंभीर बेअंत गोविंदे ऊच अथा बेअंत स्वामी सिमर सिमर हौं जीवां जियो। दुख पंजन निदान अमोले निरपहौ निरवैर अथा अतोले अकाल मूर्त अजूनी संपहौ मन सिमरत ठंडा थीवां जियो। सदा संगी हर रंग गोपाला ऊच नीच करे प्रतपाला नाम रसायन मन तृप्तायन गुरमुख अमृत पीवा जियो। दुख सुख प्यारे तुध त्याई ए सुमत गुरु ते पाई नानक की धर तू है ठाकुर हर रंग पार परिवा जियो। माज महला पंजवा तन सो वेला जित मैं सतगुर मिलया सफल दर्शन नेत्र पेखत तरिया धन मूर्त चसे पल घड़िया धन सो ओए संजोगा जियो। उद्दम करत मन निर्मल होवा हर मार्ग चलत भ्रम सगला खोया।

तुम दाते तुम पुरख विधाते तुम समरथ सदा सुख दाते सबको तुम ही ते बरसावे अवसर करो हमारा पूरा जियो दर्शन ते

संत खेल है तुम संग गोपाला, अपने संत तुद खरे प्यारे, तू संतन के प्राणा जियो, उन संतन कह मेरा मन कुर्बाने, जिन तू जाता जो तुद मन पाने, तिन कह संग सदा सुख पाया, हर रस नानक तृप्त अगाना जियो, माज महला पंजवा।

पीखीर अगावै, ज्यों निरतन तन देख सुख पावै। त्रिखावंत जल पीवत ठंडा, त्यों हर संग इहु मन पीना जियो। ज्यों अंधियारै दीपक परगासा, भरता चितवत पूरन आसा। मिल प्रीतम ज्यों होत आनंदा, त्यों हर रंग मन रंगीना जियो। संतन मोको हर मार्ग पाया, साध कृपाल हर संग गिजाया। हर हमरा हम हर के दासे, हर हमरा हम हर के दासे। नानक शब्द गुरु सच दीना जियो। माज महला पंजवां, अमृत नाम सदा निर्मलिया। सुखदाई दुख बिडारन हरिया, अवर साध चख सगले देखे।

साहिब भावै सेवक अंतर बाहर माहर जियो तू दाना ठाकुर सब बिद जान है ठाकुर के सेवक हर रंग मान है।

जिनी दर्शन पेखा से कर भले जिनी हर जस लेखा से चरण सुहावे जो हर मार्ग चले हौं बल तिन संग पछाणा जियो सुन साजन मेरे मीत प्यारे साध संग खिन माहे उधारे किल विख काट होवा मन निर्मल मिट गए आवन जाना जियो किल विख काट होवा मन निर्मल मिट गए आवन जाना जियो दोए

अमृत हर नामा हर ध्याए ध्याए सुख पाया जियो मनसा धार जो करते आवे साध संग जन्म मरण मिटावे आस मनोरथ पूर्ण होवे पेटत गुरदर साया जियो अगम अगोचर किश्मित नहीं जानी साधक सिद्ध ध्याव है ज्ञानी।

जियो जल थल पूर रहया मेहरबाना सद बलिहार जाइए कुरबाना रैन दिनस तिस सदा ते आई जे किन मैं सगल उधारे जियो राख लिए सगले प्रभ आपे उतर गए सब सोग संतापे नाम जपत मन तन हरियावल प्रभ

गोविंद प्रभ नानक सर्व समाहया जियो माज महला पंजवा सो सच मंदर जित सच त्याई है सो रिदा सुहेला जित हर गुण गाई है सा धरत सुहावी जित वसह हर जन सच्चे नाम बिटहु कुर्बानो जियो सच बडाई कीम ना पाई कुदरत कर्म न कह।

सफल एहा है कारी जियो दृष्ट धार अपना दास सवारिया घट घट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया एक सविण होर दूजा नाही बाबा नानक ए मत सारी जियो माज महला पंजवा।

जाप अलख अपेवा काम क्रोध किलबिख गुर काटे पूर्ण होई आसा जियो पूर्ण भाग पय जिस प्राणी साध संग मिले सारंग पाणी नानक नाम वस्या।

वै सो गुर मिल निहचल कहना, प्रेम भगत जिस कै मन लागी, गुण गावै अन दिन नित जागी, बहां पकड़ तिस स्वामी मिलै, जिस कै मस्तक लहना, चरण कमल भगता मन बुठे, विण परमेश्वर सगले मुठे, संत जना की धूड़ नित बांछ है, नाम सच्चे का गहना, उठत बैठत हर हर गाइय।

मनमुख पाप पचा बनिया एक रंग राते जो तुद आप लिव लाए पाए भगत तेरे मन पाए सतगुर सेवन सदा सुखदाता सब इच्छा आप पूजा बनिया हर जियो तेरी सदा शरणाई आपे बख्श हैं दे वड्याई।

आन दिन सार संभाल हर राख गुरमुख सहज समावने आम। तुद जेवड मैं होर ना कोई, तुद आपे सिरजी आपे गोई, तू आपे ही कड़ भन्न सवार है।

जी जंत सब शरण तुम हरी, आपे धर देख कच्ची पक्की सारी। अन दिन आपे कार कराए, आपे मेल मिला बनिया, तू आपे मेल है वेख है हदूर, सब है आप रहया।

गुर कै शब्द अधारा नानक नाम मिले वडियाई दुख सुख सम कर जानणिया माज महला तीजा तेरियां खाणी तेरियां बाणी बिन नावै

सच विहज है सच कमाव है सचो सच कमावणिया बिन राशि को वथ क्यों पाए मनमुख भूले लोक सवाए बिन

मनमुख परम भुलावणिया आपे देवै शब्द बुलाए महली महल सहज सुख पाए नानक नाम मिले बड़ियाई आपे सुन सुन ध्यावणिया माज महला तीजा सतगुर साची सिख सुनाई हर चेतहो अंत हुए सखाई हर अगम अगोचर।

है। अमृत मन तन बाणी रत्ता अमृत सहज सुना बनया। मन मुख भूला दूजै पाए खुआए नाम ना लेवै मरै बिख खाए।

मिलै ता चूकै फेरा, जां तुद भावै ता नाए रचावै, तू आपे नाउ जपावणिया। गुरमति हर मन वसाया, हरख सोग सब मोह गवाया, एक सिउ लिव लागे।

नानक नाम सलाहे सदा तू गुरमुख मन वसावणिया माज महला तीजा गुरमुख मिले मिलाए आपे काल न जो है दुख न संतापे हो मैं मार बंधन सब तोड़े गुरमुख शब्द सुहावणिया।

रहाओ। गुरमुख जीवै मरै परवान, आरजा ना छीजै शब्द पछाण। गुरमुख मरै ना काल ना खाए, गुरमुख सच समावणिया। गुरमुख हर दर शोभा पाए, गुरमुख विच हो आप गवाए। आप तरै कुल सगले तारे, गुरमुख जन्म सवारणिया। गुरमुख दुख कदे ना लगै शरीर, गुरमुख होमै चूकै पीर। गुरमुख मन निर्मल।

अंधियारा गुरमुख बूझ हर गावणिया अकथो कथिया शब्द सुहावै गुरमती मन सचो पावै सचो सच रवहै दिन राती इह मन सच रंगावणिया।

गुरमुख कर्म गुरमुख नेह कर्मा, गुरमुख करे सो सुभाए जियो। गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया, गुरमुख मिलिया।

रखवाला, मात गर्भ में तुम ही पाला, माया अगन न पूहै तिन कौ रंग रत्ते गुण गावणिया, क्या गुण तेरे आख संभाली, मन तन अंतर तुद नदर निहाली, तू मेरा मीत साजन मेरा स्वामी, तुद बिन अवर न जानणिया।

लिखिया तुर संजोग वडभागी मेरा प्रभ मिले ता उतरह सब वियोग नानक को प्रभ राख।

मैं मर जाती। गुरमुख रंग चलू लिया रंग हर रंग राती, सो सेव हो सत निरंजनो हर पुरख बिधाती। तू आप सुजान है वट पुरख बिडाती।

पहला ना सूर सस मंडलो ना सप्त दीप न जलो अन्न पौन थिर ना कुई एक तुई महला पहला ना रिजक दस्त आकसे हमारा एक आस वसे अस्त एक दिगर कुई एक तुई महला पहला।

आप बुझाए सोई बुझै, जिस आप सुझाए तिस सब किछ सूझै। कह कह कथना माया लूझै, हुक्मी सगल करे आकार। आपे जाने सर्व विचार, अखर नानक अखियो आप। लह प्रांत होवै जिस दात पौड़ी।

भगत करहै मूर्ख आप जनाव है, नच नच टप है बहुत दुख पाव है। नचया टपया भगत ना होए, शब्द मरै भगत पाए जन सोए। भगत वशल

गुरमुख नाम निधान लय दरगाह लय छाए रहाउ। लख चौरासी परम दे मन हठ आवै जाए, गुर का शब्द न चीन्यो फिर जो नी पाए। गुरमुख आप पछाणिया हर नाम वस्या मन आए, आन दिन भगती रत्या हर नामे सुख समाए। मन शब्द मरै परती।

निर्गुण कथा कथा है हर की, भज मिल साधु संगत जन की, तर भौजल अकथ कथा सुन हर की, गोविंद सत्संगत में लाए, हर रस रसना राम गुण गाए रहाओ, जो जन त्यावह हर हर नामा, तिन दासन दास करो हम रामा, जन की सेवा उत्तम कामा, जो हर की हर कथा सुन

नित नित सुख पाई, जितनी भूख अनरस साध है तितनी भूख फिर लागे। जिस हर आप कृपा करे सो वेचे सिर गुर आगे। जन नानक हर रस तृप्ते।

हर नाम मन चित नित ध्याव हो जन नानक जो अंति अवसर ले छाया गौड़ी बैरागण महला चौथा जिस मिले मन हुए आनंद सो सतगुर कहिए

है त्यों मन मुख गर्भ गलांढे हम जानिया कछु ना जान है आगे ज्यों हर राख है त्यों ठाडे हम भूल चूक गुर

गुर ज्ञान गुरु लिव लागे, अज्ञान अंधेरा बिनस बिनासियो, घर वस्त लही मन जागे, साकत बद्धक माया तहरी, तिन जम जोहन लागे।

सब सतगुरे आगै जिन विछड़िया हर गल लाया मेरे अंतर प्रीत लगी देखन को गुर हिरदे नाल दिखाया सहज अन

इस ग्रह में है कोई जागत रहे, साबत वस ओह अपनी लहै रहाओ। सगल सहेली अपने रसमाती, ग्रह अपने की खबर न जाती, मुसनहार पंच बटवा।

सुख निदान हर अलख स्वामी। जी जंत तेरी शरणाई, नानक नाम मिले वडियाई। गौड़ी गुआरेरी महला पंजवा।

पूर्ण राम रतन हियरे संग राख रहाओ। भ्रम की कोई तृष्णा रस पंकज अत तीक्षण मोह की फास, अत तीक्षण मोह की फास, काटन हार जगत गुरु।

सिमर सिमर कसमल सब हर रे। मानस देहे ना मानस देहे बहुर नह पावे, मानस दे बहुर नह पावे, कशु कशु उपाओ मुक्त का कर रे। मानस दे बहुर नह पावे, कशु उपाओ।

पहला हट कर मरे ना लेख पावै वेश करै बहु पसम लगावै नाम विसार बहुर पछतावै।

बिन दम के सौदा नहीं हाट, बिन बोहित सागर नहीं वाट, बिन गुर सेवे काटे काट, तिसको वाहो वाहो जे वाट दिखावे, तिसको वाहो वाहो जे शब्द सुनावे।

हों मैं निवरह गुर शब्द विचारे, चंचल मत त्यागे पंच संहारे। अंतर साच सहज कर आवहे, राजन जान परम गत पावहे। सच करनी गुर परम चुकावे, निर्भौ कै कर ताड़ी लावे। हों हों कर मरना क्या पावे, पूरा गुर भेटे सो चगर चुकावे।

नाम रते मन निर्मल होए, सतगुर सेवै सूतक जाए, मरै न जन्मै काल न खाए, शास्त्र सिमरत सोध देखो कोए।

आए। गुरमुख कर्म धर्म सच होई, गुरमुख अहंकार जलाए दोई। गुरमुख नाम रते सुख होई, अपना मन पर बुद्ध हो बूझो सोई। लोक समझावहो सुने ना कोई, गुरमुख समझो सदा सुख होई।

हरे गुर कै शब्द पंच संहारे आप तरे सगले कुल तारे माया मोह नत बाजी पाई मनमुख अंध रहे लपटाई गुरमुख अलिपत रहे लिवलाई बहुते भेख करे भेख धारी अंतर तिशना फिरे अहंकारी आप न चीने बाजी हारी कापड़ पहर करे चतुराई माया मोह अत परम पुलहाई

कह लई हर आपे कृपा करे नाम देवै गुरमुख रतन को बिरला लेवै नानक गुण गावै हर अलख अपेवै एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी बैरागण महला तीजा सतगुर ते जो मुह फेरे तेरे मुख बुरे दिसन अन दिन बद्धे मारियन फिर वेला ना लहन हर हर राखो कृपा तार सतसंगत में लाए प्रभ हर हृदय हर गुण सार रहाओ से भगत हर पाव दे जो गुरमुख पाए चलन आप छोड़ सेवा करन जीवत मोए रहन।

तब इसको है मुश्किल भारी, जब इन करने हार पछाता तब इसनो नाही किशताता, जब इन अपनो बांधियो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा, जब इसते सब बिन से परमा भेद नाही है पार ब्रह्मा, जब इन किश कर माने भेदा तब ते दुख दंड अरखेदा, जब इन एको एकी बूझया तब ते इसनो सब किश सूझया, जब एहो तावे माया अर्थी न तृप्तावे न तिसलाथी, जब इसते एहो होयो जौला पीछे लाग चली उठ कौला, कर कृपा जो सतगुर मिलियो मन मंदिर मह दीपक जलियो, जीत हार की सोजी करी तो इस कर की कीमत परी, करन करावन सब किश एक है।

कृपा होए। गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी, जिसका हृदय मंत्र दे हरी। अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द रिद अंतर तहरै।

परमानंद। सहजे अमृत पियो नाम, सहजे कीनो जी को दान। सहज कथा मह आत्म रसिया, ताके संग अविनाशी वसिया। सहजे आसन अस्थिर पाया, सहजे अनहत शब्द बजाया।

दिन सबेताला गिर तार धरण गगन अर तारे रव सस पवन पावक नीरारे दिन सरैन बरत अर भेदा शास्त्र सिमरत।

साध संग तरै गौड़ी महला पंजवा जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिस है वड्याई।

जो इस मारे तिस कौ पौ नाहे, जो इस मारे सो नाम समाहे, जो इस मारे तिस की तृष्णा बुझे, जो इस मारे सो दरगह सिजहै, जो इस मारे सो तनवंता, जो इस मारे सो पतवंता, जो इस मारे सो ई जति, जो इस मारे तिस हो वै गति।

जो इस मारे सो जीवन मुक्ता, जो इस मारे तिसकी निर्मल जुगता, जो इस मारे सो ही सो ज्ञानी, जो इस मारे सो सहज ध्यानी,

सत नीच तिस कुल नहीं जाती, जिस भया कृपाल तिस सतसंग मिलाया, कहो नानक गुर जगत तराया। गौड़ी महला पंजवा।

हर संग रखवाला, पूर्ण पुरख नवतन नितबाला, हर अंतर बाहर संग रखवाला, कहो नानक हर हर पद चीन सर्बस।

धारिया गुर निव निव लागो पाए देहो दिखारिया मैं किए मित्र अनेक एक बलहारिया सब गुण किस ही ना है हर पूर पंडारिया चहु दिस जपिय नाउ सुख सवारिया मैं आही ओढ़ तुहार नानक बलहारिया गुर काढ़े।

समाणिया मिल सखी सहेलड़ी हो हम फिर रावेहा गुर पुछ लिखोंगी जियो शब्द स्नेहा शब्द साचा गुर दिखाया मन मुखी पछताणिया निकस जाता रह आसिर जाम सच पछाणिया।

जियो गुरपुरख बिधाते पुरखो बिधाता एक श्री धर क्यों मिलहै तुझे उडीनियां कर करहै सेवा शीश चरणी।

आप रहया आप सब कल धारिया बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक शरण तुम्हारिया मोहन तु

तरा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा सलोक आप है किया कराया आप है करने जोग नानक एको।

या जुग मह एक है कौ आया, जन्मत मोहयो मोहनी माया, गर्भ कुंट मह उर्ध तप करते, सास सास सिमरत प्रभ रहते, उर्ज परे जो छोड़ छड़ाना, देवनहार मन है बिसराना, कार हो कृपा जिस है गुसाई, एत ओत नानक तिस बिसरहो नाही। श्लोक।

जी बहुत गर्भवासे मोह मगन मीठ जोन फासे इन माया त्रै गुण बस कीने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कछ कहो उपाय।

मणि मिटाए जीवत मरे गुर पूरे उपदेश मनुआ जीत हर मिले तह सूर तन वेस ना को जाने अपनो एक है टेक आधार रैन दिन सिमरत रहे सो प्रभ पुरख अपार रेण सगल या मन

हो गोविंद भज हो संत है की सिख ले हो प्रीत करहो सद एक स्यों या साचा असने हो कारण करण करावनो सब विद एक हाथ जित जित लाभ हो।

अखर महंत्र पवन प्रवत हरे, अखर कर कर वेद विचारे, अखर शास्त्र सिमरत पुराना, अखर नाद कथन बखियाना, अखर मुकत जुगत पह परमा, अखर मुकत जुगत पह परमा, अखर कर्म किरत सोच धर्मा।

नमः सद्गुरु ए नमः श्री गुरुदेव नमः अष्टपति सिमराओ सिमर सिमर सुख पावो काल कलेश तन माहे मिटावो सिमराओ जास विसंभर एक है नाम जपत अगंत अनेक है वेद पुराण सिमरत सुधा खेर कीने राम नाम एक आ

से पुरख प्रधान प्रभ कौ सिमरहें से बे मोहताजे प्रभ कौ सिमरहें से सर्व के राजे प्रभ कौ सिमरहें से सुखवासी प्रभ कौ सिमरहें सदा अविनाश।

अगन नहीं बुझै, कोट उपाव दरगाह नहीं सिझै, छूट सनाही ऊब पयाल, मोह व्यापह माया जाल, अवर करतूत सगली जम डाने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने, हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सहज।

अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कम दृष्टानी जिनतु साज स्वार शिंगारिया गर्भ अग्न मह जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार दूध पर जोबन भोजन सुख सूद।

अंधकूप मह पतत बिकराल, नानक काढ़ लेहो प्रभु दयाल। करतूत पशु की मांस जात, लोक पचारा करै दिन रात। बाहर पेख अंतर मल माया, शब्द नाहे कछ करै छिपाया। बाहर ज्ञान

सह सुख मंदर तिसह त्याय सदा मन अंदर जिह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरहु तिस रसना जिह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याय त्यावन जोग जिह प्रसाद पाठ पडंबर हंडावहि।

स्नेही जिह प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पाव है हर हर जस कहत जिह प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन शरणी पर ठाकुर प्रवता कै जिह प्रसाद तुझको ना पहुंचे मन सास सास

सो पंडित जो मन प्रबोधय, राम नाम आत्म महसोदय, राम नाम सारस पीवय, उस पंडित कै उपदेश।

अष्टपदी मानुख की टेक बिरछी सब जान देवन कहो एक भगवान जिसका दिया रह अघाय बहुर न तृष्णा लाग आय मारे राख को आप मानुख कै कृष्णा ही हाथ तिसका

एक है आप नहीं कछ परम सहस्यानप लया न जाइए नानक ऐसा गुर बड़ भागी पाइए सफल दर्शन पेख पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत पेड़ संग राम गुण रवे पार ब्रह्म के दरगाह गवे सुनकर वचन करन आघाने मन संतोख आत्म पतियाने पूरा गुर अखयो जाका मंत्र अमृत दृष्ट।

आप अष्टपदी जब अकार एहु काश नाम दृष्टे ता पापुन तब कहते होता। जब तहरी आपन सुन समाध तब बैर विरोध किस संग कुमात। जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत तब हरख सोग कहो किस है व्यापत। जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम। आपन खेल आप वर्तीजा नानक करने हार ना दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस कौ गनी। जब एक कह हरागमा पार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव शक्त कहो कित ठाए। जब आप है आप अपनी जोत तहै तब कवन निडार कवन कत डरै। आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार। अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण कहो कहाँ विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अविगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत।

हर हर भजन ना मन मह आयो सुख सागर प्रब निमख नंगायो हरख शोक का देह कर बांधियो दीर्घ रोग माया असाध्यो दिन है बिकार करत श्रम पायो नैनी नींद सुपन बरडायो हर विसरत होवत ए हाल शरण नानक प्रभ पुरख दयाल। श्लोक

तुलिया सेवड़ भागी जे तुद ध्याए दे जिन सतगुर मिलिया सतगुर की बाणी सत स्वरूप है गुरबाणी बनिया सतगुर की बाणी सत स्वरूप है गुरबाणी बनिया सतगुर की रीस है हो

तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावै, जन नानक धूड़ मंगाए तिस गुर सिख की। जो आप जपै अवरह नाम जपावै पौड़ी, जो तुद सच ध्याएं दे से बिरले थोड़े। जो मन चित एक अराध दे तिन की बरकत खाहे असंख करोड़े।

करो हर गुर सफल दर्शन की, फिर लेखा मंगे ना कोई पौड़ी। नानक विचार है संत जन, चार वेद कहंदे